मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बज रहे हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का

छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

वंदना में अभी आपने समूह स्वर में ब्रह्मदत्त नारायण सिंह के स्वर में ये गीत सुना। रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की। अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

वंदना में अभी आपने मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत सुना। अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

वंदना में अभी आपने ये भजन सुना। अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये आरती।

वंदना में अभी आपने अनुराधा पौडवाल के स्वर में शिवजी की आरती सुनी। शिवजी की आरती के साथ ही वंदना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी। 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

6:50 पर होगा आज का चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनिए प्रभुदयाल श्रीवास्तव से वार्ता ईसुरी के काव्य में श्रृंगार। 7:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर सुनिए धारावाहिक गीत गाता का भाग 10, शीर्षक है विभूति योग। 9:00 लोकरंग में सुनिए ज्योति राय से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए संगीतकार विशाल शेखर के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर होगा मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से। 1:00 स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे।

0: शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में सुनिए सवाल हमारे जवाब आपके। इसके अलावा रोहन सिंह यादव से वार्ता नदियों की स्वच्छता। 5:40 पर होगा फिल्म संगीत। 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में सुनिए मुन्ना डाल खरे व साथियों से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्राम सभा में ग्रामीण भाई सुने श्रोताओं के पत्रों, फोन कॉल्स और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतूला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। मछली पालन कैसे करें विषय पर वीरन रैकवार से स्वप्निल अग्रवाल की बातचीत। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा जी के कुल की जोन है लह रहत है टोन सिंह बाघ के जेनुआ चेनुआ इन्हें सिखावत कौन। आठ बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10 बजे सुनिए श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: आज की खेती किसानी में अपने पशुपालकन से अपने पशुधन से अधिक दूध को उत्पादन प्राप्त करने के तरीकन की कछु चर्चा हम कर रहे हैं।

0: अपने दुधारू पशुओं से अगर अपन दूध अधिक ले वो चाहत हैं, तो जरूरी है कि उनके आहार प्रबंधन में सुधार करके पोषक आहार पशुओं का उपलब्ध कराएं। जब अपन रोज पर्याप्त चारों पानी अपने जानवरों का देते हैं, तो जो सवाल मन में उठ वो मुनासिब है कि जो आहार प्रबंधन या पोषक आहार का और कैसे होते है, तो जो जानवे के लाने ध्यान से सुनो। ऐसो आहार प्रबंधन जिसे अपने जानवरन के शारीरिक विकास व शारीरिक आवश्यकता वाले सभी तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जावे, एक उम्दा पोषक आहार कहाउत है। भैया, उम्दा पोषक आहार अपने जानवरन की खुराक तो पूरी करता ही है, संगे संगे उनकी प्रजनन शक्ति बढ़ावे में, दूध की मात्रा बढ़ावे में, फेट यानी दूध में घी की मात्रा बढ़ावे में भी सहायक होत है। मांगी खरी दाना या फिर बाजार में बिकवेई वालो बनोबनाओ पशु आहार पोषक आहार है या होत है, ऐसो सोचवो या मानवो बिल्कुल गलत है। इमें खर्चा करवो अपने पशुपालन की लागत बढ़ावो आए। इके एवज में तनासी जानकारी जुटा के, थोड़ी सी मेहनत करके और वैज्ञानिक तरीका से अपन अपने घर में बहुत ही उम्दा, शुद्ध, सस्तो और संतुलित पोषक आहार अपने जानवर के लिए तैयार कर सकते हैं। पशु आहार में सूखी घास और हरो चारो मुख्य है। जी में हरे चारे को बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसे अपने जानवरन का कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भैया, हरे चारे की पूर्ति अपन पूरे साल तो कर नहीं सकत। पे ही समस्या को समाधान अपने पशुपालक भैया हरे चारे को साइलेज बना के कर सकते हैं। अब जो जरूर अपन जानवो चाहो कि जो साइलेज कैसे बनत, चलो जो भी हम बता रहे तना ध्यान से सुनो। साइलेज खा अपन हरे चारे को अचार भी कह सकत, जो मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहनी चारे आदि फसलों से तैयार करो जात है। साइलेज तैयार करवे के लाने 3 मीटर लंबो, 1.25 मीटर गहरो और 2 मीटर चौड़ो गड्ढा अपन का करने हैं, जी की तरी और दीवारें गोबर में BSC पाउडर मिला के लीप के चिकनी कर देने हैं। जब गड्ढा अच्छे से सूख जावे तो चारों को सूखे घास की एक परत लगा देने हैं। इतनो करवे के बाद अच्छी रसीली अवस्था में 4 से 5 सेंटीमीटर आकार को हरो चारों काट काट के गड्ढा में दबा दबा के ठास ठास के ठूस के भरत जाने, जिसे ऊके भीतर हवा ना जान पावे। अगर अपन दलहनी चारे से साइलेज बना रहे हो तो 2-2 फुट के चारे की परत के बाद गुड़ या शक्कर के पानी को घोल भी छिड़क जाने। भैया, ऐसो करत कर जब गड्ढा पूरा भर जाए तो फिर सूखी घास या भूसा से ढक के मिट्टी और गोबर से लीप के बंद कर दें। 50 से 60 दिना में अपने जानवर के लाने साइलेज बन के तैयार हो जाए। जी में ताजे हरे चारे से भी ज्यादा पोषक तत्व राहत है, जल्दी पचे वालो होत और सबसे अच्छी बात इखा पूरी साल अपन दूध दे वाले जानवरन खा हरे चारे के रूप में खवा सकत हैं। तैयार साइलेज खा जानवरन खा डारवे के लाने जब अपन निकारें तो ध्यान रखने है कि एक तरफी से गड्ढा का खोल के निकारें और फिर बंद कर दें। अपन बाजार के खरीदे पोषक आहार में 25% की कटौती कर दें और अपने घर में अपने हाथन तैयार साइलेज दूध देवे वाले जानवरन का खवाएं, तो हमारी जा कहीं माने रहियो उन जानवरन की दूध देवे की मात्रा घट तो सकत नहीं है, बढ़ जाए जितनी जाए। इके अलावा 4 किलो यूरिया को घोल 60 लीटर पानी में और 10 किलो गुड़ को घोल 8 लीटर पानी में अपन बनाए। एक बड़ी बरसाती पे 100 किलो सूखो चारो या भूसा फैला के इपे एक फब्बारे से यूरिया और गुड़ के मिश्रण के घोल को छिड़काव करके उपचारित करें। 2 हफ्ता के लाने चारों कोच से ऐसो बंद करके पॉलीथीन से रखें कि उमे तनकु हवा न जान पावे। इखा धूप और बरसात से भी अपन का बचाव नहीं है। 2 हफ्ता बाद उपचारित भूसा या चारे खा 3-4 घंटा के लाने खुलो छोड़ देने हैं, जिसे उमे बनी अमोनिया गैस निकल जावे। भैया, ई प्रकार से उपचारित भूसा हवा की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन खा प्रोटीन में बदल के अपने भूसा या सूखे चारे खा एक उम्दा पोषक आहार में बदल देते है। 21 दिना बाद 6 महीना से छोटे जानवरन खा छोड़ के सबरे दूध देवे वाले और अन्य सभी जानवरन खा अपन खूब खवा सकते हैं। तो सबरे पशुपालक भैया नई बचारन के संगे पूरे वैज्ञानिक तरीका से अपने घर में अपने जानवरन को संतुलित पोषक आहार को निर्माण कर सकत और पोषक आहार के प्रबंधन की समस्या से छुटकारा पाके दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकत हैं। ऐसो करे में अपन खा लाभ भी हुई है और पशुपालन की लागत में कमी भी आ है।
1: अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

0: अभी श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर सुधा मल्होत्रा व रामकिशन चंदेश्री का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हमारे देश में अन्न को परब्रह्म की संज्ञा दी गई है, किंतु ये हम क्या कर रहे हैं? आप किसी भी विवाह समारोह में जाइए, वहां आपको क्या नजारा देखने को मिलता है? हमारे देश में नहीं वरन विश्व में कई छोटे छोटे देश ऐसे हैं जहां लोगों को अन्न की कमी के कारण कई दिनों तक भूखा सोना पड़ता है। ऐसे में हम विवाह समारोह में इतने अन्न की बर्बादी कैसे कर सकते हैं? आजकल कहीं बफे सिस्टम चलन में है। बफे सिस्टम में खाना हमारी सुविधा के लिए होता है, ताकि लोग अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक खाना लें और खाने की बिल्कुल भी बर्बादी न हो। लेकिन किसी भी समारोह में आप देखेंगे कि मेहमान प्लेटों में खाना इतना अधिक भर लेते हैं मानो उन्हें दोबारा खाना नहीं लेने दिया जाएगा। शादी में खाने की जितनी ज्यादा वैरायटी होती है, खाने की बर्बादी भी।

0: उतनी ही अधिक होती है, और अंत में न खाने के कारण वो पूरा का पूरा खाना डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है। हम केवल खाना ही नहीं फेंकते, वरन खाने के साथ डिस्पोजेबल प्लेट, कटोरी और गिलास आदि भी फेंक देते हैं। समारोह के संयोजक समारोह के पश्चात पूरी की पूरी जूठन सड़कों पर या डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी खाने को हमारे देश के भूखे गरीब बच्चे उठा उठा कर खाते हैं। सड़कों पर फिरने वाले जानवर खाते हैं और खाकर बीमार होकर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फेंका गया खाना सड़कों पर सड़ता है, जिससे वहां मक्खी मच्छर और रोग के कीटाणु पनपते हैं। यदि कूड़ा उठाया नहीं गया तो वो नालियों में जमा होकर नालियों को चोक कर देता है और हमारे पूरे शहर को गंदा करता है। क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? हम इस समय स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता किसी भी एक व्यक्ति का काम या जिम्मेदारी नहीं है, परन ये एक समाज या समुदाय का सामूहिक कार्य या जिम्मेदारी है। और इसी कारण जब तक हम जन समुदाय को जागरूक नहीं करेंगे, उनकी इस कार्य में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम इस मिशन में सफल नहीं हो सकते। सफाई अभियान हो या खुले में शौच से मुक्ति हो, इन दोनों ही कार्यों में सफलता शासन के प्रयासों से नहीं, वरन प्रत्येक नागरिक या पूरे समाज के सामूहिक प्रयासों से ही प्राप्त होगी। संगीत किसे प्रिय नहीं होता, किंतु शादी घरों में डीजे पर ऊंचे कर्कश स्वरों में जो संगीत बजता है, वो युवाओं को भले ही आनंदित करता हो, लेकिन विवाह समारोह में आने वाले वयस्क मेहमानों के स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। शासन की अनेक पाबंदियों के बावजूद समय सीमा के पश्चात भी संगीत बजता है, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले लोग सोना तो दूर आराम भी नहीं कर पाते। यदि उन घरों में कोई बीमार हो तो समस्या और भी बदतर हो जाती है। विवाह के संबंध में शासन द्वारा आयु निर्धारण एवं दहेज विरोधी कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन सभी कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए आज भी हमारे यहाँ बाल विवाह होते हैं। हम दहेज लेते हैं और देते हैं। दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करना, जलाना, मारना, ये बुराइयां आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। व्यक्ति के पास जितनी अधिक सत्ता, पैसा और अधिकार होता है, उतना ही अधिक धन संपदा का दुरुपयोग एवं उसका फूहड़ प्रदर्शन देखने को मिलता है। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और अमीर तो शादी में की गई फिजूल खर्ची को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। बाजारवाद एवं भौतिकवादी संस्कृति के कारण ही ये सत्ता और पैसे का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमें कहीं न कहीं रुकना ही होगा। उसके लिए जन जन में जागरूकता लानी होगी। जब तक हमारे देश के नेता, उद्योगपति और विचारक इस ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, विवाह में सरलता और सादगी को तवज्जो नहीं देंगे, तब तक ये अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। शादी में दहेज एवं फिजूल खर्ची के कारण सामान्य नागरिक कंगाल होता रहेगा, क्योंकि सामान्य नागरिक तो इन्हीं व्यक्तियों को देखकर ही अनुसरण करता है। आइए आज हम सब ये प्रण करें कि देश में होने वाली धन और अन्न की बर्बादी को रोकेंगे। अन्न की बर्बादी न कर बचा हुआ खाना साफ सुथरे तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। अपना पैसा फिजूल खर्ची में बर्बाद न कर किसी उत्पादक कार्य में लगाएंगे, जिससे अनेक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हमारे पैसे का भी सर्वोत्तम उपयोग होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्।

0: अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोऽपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरंगस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्याणां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादश दिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादश दिनांके भविष्यति। एकोननवति वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमन कल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशति शततमाद् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशति शततमं वर्षं यावत् चलचित्र संगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को

0: देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामुगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में लॉन्च की ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी एप्लीकेशन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब। विराट कोहली बने मैच के हीरो। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर शनिवार को आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की थी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। कल 2 जून को वे मुंबई में उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। इससे पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसान संगठनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान और रासायनिक खादों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
0: इंदौर में रविवार की शाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन आज भी रामराज्य की याद दिलाता है। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत और न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी को अहिल्या गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल शाम इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस मौके पर 18 हाईटेक ड्रोन और 10 पुलिस वाहन भी इंदौर पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। ये ड्रोन कानून व्यवस्था और यातायात निगरानी में पुलिस की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 3 नए थाने के खोले जाने की घोषणा भी की।
2: पुलिस कमिश्नर के माध्यम से 3 पुलिस थाने की आपने डिमांड की है, 3 पुलिस थाने भी इंदौर में बनाए जाएंगे और आवश्यक पुलिस बल जो निर्धारित मापदंड के हिसाब से अभी कम है, निश्चित रूप से हमारी सरकार एक एक करके वो सारे काम कर रही। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड स्थापित कर रहे हैं। पुलिस की भर्तियों में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 पदों की भर्ती हर साल करते जा रहे हैं।
0: वहीं इंदौर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉ यादव ने उज्जैन संभाग के 31 समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में वे लोग शामिल थे जो नदी नाले पार कर और लंबा रास्ता पैदल तय कर दूर दराज के बच्चों तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। इस बार वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। वहीं भारत में इस बार 15 मई से 5 जून तक 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं भोपाल में कल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ शहरी आवास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें देशभर में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शहरी योजनाकारों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के विकास में प्रकृति और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में रखना जरूरी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में नीदरलैंड से वापस लाई गई 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इन 24 पट्टिकाओं में चोल वंश की उपलब्धियां और उनकी समुद्री ताकत का वर्णन है। श्री मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़

0: छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिली तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का भी उल्लेख किया जो छठी सातवीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल जिले में एक अनोखा गांव है जो सदियों पुरानी जनजाति कला को जीवित रखे हुए है। यह कला मूलतः भरेवा जनजाति की परंपरा है, लेकिन अब सामान्य समाज के लोग भी इसे अपना रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
1: जिला मुख्यालय बैतूल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा टिगरिया गांव अब क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने वाले और गांव को अनूठी पहचान दिलाने के लिए वाघमारे परिवार मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाता है। इनकी हस्तशिल्प कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इनकी मेहनत के चलते अब उनके गांव को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज घोषित कर दिया है। भरेवा कला के काम में माहिर बलदेव वाघमारे बताते हैं,
2: बैतूल जिले के महोदस गांव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस काम को करते हैं। बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला जीआई टैग मिला हुआ है और भरेवा कंदन के नाम से कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश के 55 जिलों में से 1,44,000 से अधिक प्रगणकों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती और जानकारी जुटाई। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से की गई। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें परिवारों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी कल से 5 जून तक मालवा निवाड़ अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में जिला समन्वय समिति की बैठकें और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इस साल मानसून 5 से 7 दिन देरी से आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान है। विभाग ने आज धार और खरगोन में ओले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि झाबुआ समेत कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कल आंधी और बारिश के चलते प्रदेश में तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया और सबसे ज्यादा गर्मी शाजापुर में 41.4 डिग्री दर्ज की गई। रायसेन जिले के छोटे से गांव सेमरी की बेटी अंजना यादव ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अंजना का साहस और संकल्प सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है। एवरेस्ट विजेता अंजना आज भारत लौट रही हैं और प्रदेश में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा, झाबुआ, शिवपुरी, राजगढ़ और गुना समेत विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया। नीमच आरसेटी संस्थान के द्वारा 3 जून से चीताखेड़ा मेन रोड कथित विश्राम भवन के पास महिलाओं के लिए निशुल्क 31 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीहोर में नगरपालिका द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर उपवन में कल डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर मातृभाषा.com और हिंदी सेवी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन कल किया गया और डिंडोरी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी महक। इसके अंतर्गत सुनिए प्रभुदयाल श्रीवास्तव से वार्ता, ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार।
1: ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार। बुंदेली साहित्य के विकास में ईश्वरी को बहुत बड़ा योगदान मानो जात। ईश्वरी के लाने कही जात के रामायण तुलसी कही, तानसेन ज्यों राग सोई या कलिका।

काल में कही ईश्वरी फाग। ईश्वरी को जन्म चैत सुदी दसें गुरुवार के दिन संवत 1898 में मेढकी के पास मऊरानीपुर के पास मेढकी गांव में भवतो। इनके पिता श्री भोला प्रसाद अलजरिया और माता गंगा देवी इन्हें बचपन में छोड़ के स्वर्ग राजा हो गए थे। सो इनके मामा भूधर नायक अपने संगे टीकमगढ़ जिला के लोहर गांव में लुआ ले आए। बड़े होके जे मामा की जमींदारी की देखभाल करन लगे। मामा माई की कोनू संतान नहीं हती, सो जे ही सब कछु हते। मामा ने इनको ब्याह सीगोन के पंडित भोलाराम मिसर की बिन्नू श्याम देवी से कर दो। श्याम देवी जसो नाव उसी रूप रंग की हती। सो इनकी मित्र मंडली इनके काले रंग को लेके इन्हें चढ़ाउती। जे मोटूर जवाब दे देते कि जो मोरीखों कारी कह है चार खरी सुन ले है, जो कारी कड़ुआ खो जय है कड़ुआ को न दे है, कारी जी खो बुरे लगस्सो संग बैठना खे है और कारी बंदी गरे ईश्वर के ऊखों ओई न बह है। ईश्वरी के पहला छंदियाऊ डिड़खुरियाऊ खड़ी फाग झूला की फाग और लाल फाग को चला हतु। ईश्वरी ने चौकड़िया फाग की शुरुआत करी, जी में 16 और 12 मात्राएं होती, ललित छंद है और नरेंद्र पद। उनकी इन चौकड़िया फागन ने ऐसी धूम मचाई कि फाग के फड़न पे और राय की चौपालन पे ईश्वरी छा गए। ईश्वरी की रची फागें धीरे पंडा की गायकी और गंगिया और सुंदरिया के नाच की त्रिवेणी ने ईश्वरी को उनके जीवनी काल में अमर बना दो। ईश्वरी को काल सम्मत 1898 से 1966 तक मानो जात। ईश्वरी ने फागें तो हर तरह की लिखी पे आधो घर अजगर और आधो घर सबगर। आधे से ज्यादा फागें श्रृंगार रस की लिखी। श्रृंगार के तो वे रस सिद्ध कवि हते, श्रृंगार के दो ही पक्षन पे ईश्वरी ने फागें लिखी। ईश्वरी को श्रृंगार वर्णन इन बिंदुअन के आधार पर परखो जा सकत। रूप की रमणीयता वर्ण और कांति। मोरी रजव से नौनी कोहे डगर चलत मन मोहे, अंग अंग में कोल कोल के इंगो रंग भरो है, मन को हरण गाल को गुदना तिलसो तनक धरो है और ईश्वर कहत उठत जोवन को बरहा जोर करो है। ईश्वरी ने अंगन को वर्णन भी करो, मो गाल ओंठ आँखें आदि को वर्णन बहुत साजो बन परो। एक ही सोग तनक झलक देख ली जाए। गोला मोह पे पटियां पारें सुंदर मांग समारे, सोने के कल सा पे जैसे कागा पंख पसारे, दो बगल बहें सुंदर सी गंग जमुन की धारें, तिर बैनी बैनी हो देखत रहती समट किनारे और ईश्वर का दरस के होतन कलमल शिखर निकारें। रूप सज्जा केश विन्यास पे भी ईश्वरी ने अच्छी चौकड़ियां लिखी। एक चौकड़िया केश विन्यास के ऊपर है, छूटे डरे केश अनगोए आज लाडली धोए, बूंदा चुवत नितंबन ऊपर कम से गए निचोए, बिखरे केश भुजन पे आए शेष नांग से सोए, ईश्वर छवि छाजे पे देखत भान चंद्रमा मोए। एक अंगिया की शोभा को बखान तो देखो, जीपे लिखी पपीरा मोरें ऐसी अंगिया तोरें, मुत के लाल मुनैया लिपड़े चिरवा चारू चकोरें, पीरी हरी मुनैया चिपकी सुगा मुरक मुख मोरें और घायल करन कोयलियां ईश्वर दो छाती के दूरें। ईश्वरी ने हाव भाव अंग चेष्टाएं पे भी अच्छी चौकड़ियां लिखी। एक चौकड़िया प्रस्तुत है कि हंसके नजर छेल पे डारें कड़ी और यार समारें, काजर छुरी बखरोवा पटियां भोयन की तरवारें, लंबी खोर दूर नो डारें सैन दुनाली मारें और कात ईश्वरी बचके रहियो जाभई नार उतारें। प्रकृति चित्रण में भी ईश्वरी ने बहुत अच्छी चौकड़ियां लिखी के अवृत आई बसंत बहारन अरे पान फूल फल डारन,

बसंत बहारन हारन हद पहारन पारन धाम धवल जल धारन अभृत आई बसंत बहारन कपटी कुटिल कंदरन छाई गई बैराग बिगारन अभृत आई बसंत बहारन जिनके कंत अंत घर से रहे उन्हें देत दुख दारुन अभृत आई बसंत बहारन ईश्वर अम्ब मोर के ऊपर लगे भौर गुंजारन अभृत आई बसंत बहारन। ईश्वरी ने लालसा को चित्रण क्या करो देखो कैसे उन्होंने बन परो जो तुम छैल छला बन जाते जो तुम छैल छला बन जाते परे उंगरियन राते जो तुम छैल छला बन जाते मोह पोंछत गालन से लगते सो कजरा देत दिखाते जो तुम छैल छला बन जाते घरी घरी घूंघट खोलत मैं घरी घरी घूंघट खोलत मैं अखियन सामू आते ओ ईश्वर दूर दरस के लाने ऐसे काय ललाते जो तुम छैल छला बन जाते। रूप को प्रमाणीकरण के लाने ईश्वरी ने एक चौकड़िया लिखी कि जब तक कामदेव रूपी राजा से प्रमाण पत्र नहीं मिले तब तक रूप नहीं मानो जात। जौलो मदन भूप ना आवे अरे रूप सनद ना पावे कच्ची कली भरी बालापन रस कां से आ जावे गढ़ जो कोट बिना गुरजन को फीको जबई दिखावे और ईश्वर ई बारे जो वन पे हरा हरा रस आवे जौलो मदन भूप ना आवे। एक वियोग श्रृंगार को चित्र सो देखत चलें जी में ईश्वरी ने बहुत बढ़िया चौकड़िया लिखी कि मैंने बाट रात भर हेरी छैल बिदर दी तेरी मैंने बाट रात भर हेरी पीकत रही पपीरा जे

ओ उठ उठ भगी सेज सुनी से आंख लगी ना मेरी, ओ तलफ तलफ सो गई सुरी तीतुर बिना बटेरी, मैंने बाट रात भर हेरी। ईश्वरी ने श्रृंगार रस के अलावा नीति की चौकड़ियां लिखी। एक उदाहरण प्रस्तुत है कि सबसे बोलो मीठी बानी थोड़ी सी जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी ओ जई बानी गजरा पैराबे जेई उतारे पानी, सबसे बोलो मीठी बानी जेई बानी बैकुंठ पठेबे जेई नरक की खानी, सबसे बोलो मीठी बानी ओ ईश्वर चल दे परम धाम खो करके नाम निशानी, सबसे बोलो मीठी बानी। एक भक्ति रस की चौकड़िया प्रस्तुत है कि उनकी करिए तावेदारी अरे जो लें खबर हमारी, एक मंदिर में रामचंद्र हैं एक में कुंज बिहारी, और जिनकी पूजा करत रात दिन पंडित और

0: दारी अध्यात्म की चौपाई।
1: अभी हिंदी महक का प्रसारण

0: किया जा रहा था। इसके अंतर्गत आपने सुनी प्रभुदयाल श्रीवास्तव से वार्ता ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत है फिल्म पहली तारीख से। आवाज किशोर कुमार की है, गीत कमर जलालाबादी का है और संगीत सुधीर फड़के का।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना।

बाबू, वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना आज पहले।

हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

राधा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता वाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है। पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

0: गीत है।
1: अभी आपने किशोर कुमार की ये आवाज़ में फिल्म पहली तारीख का ये गीत सुना। अब लीजिए अगला गीत है फिल्म गोदान से, आवाज लता मंगेशकर की है, गीत अंजना की और संगीत पंडित रविशंकर का है।

फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म पगला कहीं का ये गीत। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत शंकर जयकिशन का।

रोते ही आए रोते ही जाती, प्यार ने हमको जीना सिखाया, वरना उम्र को कैसे बिताती, वरना उम्र को कैसे बिताती। सुनो जिंदगी गाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: AIR at 90.
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। अब लीजिए सुनिए अगला गीत है फिल्म प्रीति से। आवाज किशोर कुमार की है, गीत सावन कुमार का और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म नास्तिक का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: प्यारे आगे चल।
1: फिल्म संगीत का अंतिम गीत है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म सम्राट का ये गीत गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
0: दो मिठियां गल्ला कर कुड़िए हंस के साडे नाल अरे साथ खड़े हम दोनों लगते हैं सोनी महिवाल। लड़की हसीन हो।

0: सम्राट फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत

0: संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक लायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं, और ये बुढ़ापे में

0: 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गाता का भाग 10। शीर्षक था विभूति योग। मीडियम वेव पर

अभी आप सुन रहे थे देश गान। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें सुनिए ज्योति राय के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिए गणेश वंदना।

लोक रंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए देवी गीत ज्योति राय की आवाज में। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं हरिशंकर बेन, बेंजो पर मदन सेन और बांसुरी पर मनोज। आइए सुनते हैं ज्योति राय की आवाज में ये देवी गीत।

0: Akashvani at 90.
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मदर की माता।
3: लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लेद शिव महिमा पर आधारित ये लोकगीत ज्योति राय की आवाज में।

0: AIR at 90.
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: लोकरंग में अब लीजिए सुनिए बुंदेलखंड की महिमा पर आधारित ये लोकगीत ज्योति राय के स्वर में।

लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कछियाई लोकगीत ज्योति राय के स्वर में। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं हरिशंकर बेन, बेंजो पर मदन सेन और बांसुरी पर मनोज।

इसी बन्ना लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है एक ही संगीतकार। इसमें सुनिए संगीतकार विशाल शेखर के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत है फिल्म करम से, आवाज अलीशा चिनाई की है, गीत इरशाद कामिल का और संगीत विशाल शेखर का है। विशाल शेखर भारतीय फिल्म संगीत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय संगीतकार जोड़ों में से एक हैं। इस जोड़ी में विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी शामिल हैं और दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा में ऐसी धुनें रची जो व्यावसायिक सफलता के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी बन गई। उनकी संगीत यात्रा 1999 में शुरू हुई और जल्द ही वे समकालीन बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद हिट निर्माताओं में गिने जाने लगे।

अब लीजिए सुनिए फिल्म भूतनाथ का ये गीत, आवाज़ है हरिहरन और सुखविंदर सिंह की, गीत जावेद अख्तर का है और संगीत विशाल शेखर का है। उनका पहला बड़ा फिल्मी जुड़ाव प्यार में कभी कभी से माना जाता है, जहां दोनों ने अलग अलग गीतों पर काम किया था और वहीं से उनकी साझेदारी मजबूत हुई। इसके बाद वर्ष 2003 की झंकार बीट्स ने उन्हें वास्तविक पहचान दी और फिल्म फेयर का आरडी वर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट भी मिला। इसके बाद 10 सलाम नमस्ते और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों ने उन्हें मुख्यधारा के शीर्ष संगीतकारों की पंक्ति में ला खड़ा किया।

क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता हूँ, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूँ। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं

0: दिन ढलता।
1: आप सुन रहे हैं संगीतकार विशाल शेखर के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं शेखर, कमल कमाल खान, रजा हसन और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म 30 मार खां का ये गीत। गीत है अन्विता दत्त का। विशाल शेखर की सबसे बड़ी ताकत उनकी शैलीगत विविधता है। वे रॉक, इलेक्ट्रॉनिक, पॉप, सूफी और भारतीय शास्त्रीय प्रभावों को एक साथ पिरोकर ऐसे गीत बनाते हैं जो मंच पर भी असरदार लगते हैं और फिल्म के भाव को भी आगे बढ़ाते हैं। विशाल ददलानी की ऊर्जा और रॉक पृष्ठभूमि तथा शेखर रवजियानी की प्रशिक्षित गायकी और मधुरता मिलकर उनके संगीत को संतुलित और व्यापक अपील देती है।

एक ही संगीतकार में अब लीजिए सुनिए फिल्म डर्टी पिक्चर्स का ये गीत। गीत आवाज है कमाल खान की, गीत है रजत अरोरा का। विशाल शेखर की हिट फिल्मों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन कुछ नाम खास तौर पर याद किए जाते हैं। ओम शांति ओम, बचना ए हसीनो, दोस्ताना, अनजाना अनजानी, आई हेट लव स्टोरी, रावण, द डर्टी पिक्चर्स, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, सुल्तान, टाइगर जिंदा है। इनमें मैं अगर कहूँ खुद जाने, देसी गर्ल, तुझे भुला दिया, शीला की जवानी, चमक चलो, इश्क वाला, लव, जग धूपिया, दिल दिया गल्ला और बेशरम रंग जैसे गीत बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुए। इन गानों ने उन्हें न सिर्फ कॉमर्शियल सफलता दी बल्कि कई पीढ़ियों के श्रोताओं से जोड़ भी दिया है।

के नाम शामिल हैं। ओम शांति ओम के लिए उन्हें एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट कंपोजर का पुरस्कार मिला, जबकि छम्मक छल्लो और बेशरम रंग जैसे गीतों ने अलग अलग मंचों पर जीत और नामांकन दिलाए। यह सम्मान इस बात का संकेत है कि उनका प्रभाव केवल लोकप्रियता तक सीमित नहीं, बल्कि आलोचनात्मक मान्यता भी हासिल करता है।

अब लीजिए सुनिए फिल्म कहानी का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत है विशाल ददलानी का। विशाल शेखर को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिला है। उनकी उपलब्धियों में फिल्मफेयर, आईफा, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड और कई अन्य सम्मानों

0: Akashvani at 90.
1: अंतराल के पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही संगीतकार। इसमें आज आपने विशाल शेखर के संगीत पर कुछ फिल्मी गीत सुने। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वह चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक महीने में जिले में क्या क्या खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात सबसे पहले इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। इस बड़े आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कृषि और रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशी मेहमानों के लिए प्रदेश की संस्कृति, कृषि उपलब्धियों और पर्यटन की झलक भी खास तौर पर दिखाई जाएगी। खेती की बात चली है तो किसानों के लिए भी एक उत्साहजनक खबर है। जिले में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय बढ़ाने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े चयनित किसानों को जिला स्तर पर 25,000 और विकासखंड स्तर पर 10,000 रूपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में बीते दिनों युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 91 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला। वहीं आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 300 से अधिक पदों पर प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रोजगार के साथ साथ युवाओं को सुरक्षा सेवाओं में अवसर दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत इंदौर में 200 चयनित विद्यार्थियों को सैन्य बल, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं की प्रतिभा को खेलों में निखारने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छोटी बेटमा स्थित शासकीय राजा शंकर शाह विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स, हैंडबॉल और कुश्ती के लिए 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 11 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की। शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 3 विषयों क्रिया शरीर, रचना शरीर और शालाक्य तंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे आयुर्वेद शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक एक्सरे किए जा चुके हैं। टीबी की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव उपचार में इंदौर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की एक मिसाल महू तहसील के आशापुरा गांव में देखने को मिल रही है। यहां 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आधुनिक और विशाल गौशाला विकसित की जा रही है। इस गौशाला में करीब 10,000 गायों के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंदौर की चर्चा हो रही है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 48,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 28,000 संयंत्र सिर्फ इंदौर महानगर क्षेत्र में ही स्थापित हुए हैं। आध्यात्म और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में 17,41,00,000 रूपये की लागत से श्री परशुराम श्रीकृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके साथ ही गंभीर और अजनार नदियों के पुनर्जीवन की योजना भी तैयार की जाएगी। न्याय व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी सफल रहा। बीते दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 107 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 47,00,000 रूपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में भी 57 मामलों का निपटारा कर 2,20,00,000 रूपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। और अंत में बात करते हैं उस संस्था की जो दशकों से देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाती रही है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। देश विदेश के श्रोताओं ने इस लाइव कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं और यादें साझा की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस गरिमामय समारोह का समापन हुआ। इंदौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। इसमें सुनिए पुष्पा पागधरे के स्वर में ये भजन। गीतकार हैं चंद्रशेखर पांडे।

मिश्रित संगीत के कार्यक्रम सबरंग में आप लीजिए सुनिए फिल्म ये रात फिर ना आएगी का ये गीत, आवाज है आशा भोसले की।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

Akashvani at 90. श्रोताओं, अंतराल के पहले आप सुन रहे थे मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सब रंग। इसमें आपने सुने भजन, गजल, गीत, फिल्मी धुन और फिल्मी गीत।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त दर्शना गोस्वामी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म कुछ लव जैसा से। आवाज मोहित चौहान और मोनाली ठाकुर की है। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत प्रीतम का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। सारणी जिला बैतूल से श्रोतागण हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, नामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाबराव निम्बालकर और संदीप पाटिल। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुम चंद्र कटारिया, पिंटू सेन, हरनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्नव एवं काव्यांशी कटारिया।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रेडी से। आवाज तुलसी कुमार और केके की है, गीत नीलेश मिश्रा का और संगीत प्रीतम का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं, मेल किया हुआ है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुकर, सदानंद मंदुकर और कुमार गौरव मंडुकर। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से मेल किया हुआ है सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से हैं रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी, मिथिल, प्रगति नचानी। एसएम जावेद सखुफ्ता अंजुम गुमला ये झारखंड से हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म तनु वर्ड्स मनु से। आवाज कृष्णा की है, गीत राजशेखर का और संगीत कृष्णा का है। हमारे ईमेल श्रोता हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। पांडर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्लर शाह से सूरज लोड़े, प्राची लोड़े, एकलव्य लोड़े। जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल।

ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। श्रोता रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोटखे, श्रीमती नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे और उत्तम जमदाड़े।

आवाज है प्रतीक कुहत की, गीत और संगीत भी प्रतीक कुहत का है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ईमेल भेजा है। अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। राज पैलेस मऊनाथ मंजर भंजन उत्तर प्रदेश से है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। तो आइए सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म कारवां का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम अगले कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।
2: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जुड़ा है और आपकी फरमाइश जुड़ी है टेलीफोन नंबर से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, जितना इंतजार आप करते हैं अपनी फरमाइश का।
3: हेलो,
2: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
3: हाँ, फोन करें, गीत सुने।
2: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं खैरो कला से रमेश चंद्र नायक बोल रहा हूँ, जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से।
2: जी नायक जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है जी।
2: क्या चल रहा है?
3: और ठीक ठाक है। अभी तो अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो अभी जो है खेती पाती सब हो गई है और जो है ब्याह शादी भी अभी रुकी हुई है, जून में है। हाँ, तो अभी तो फुर्सत के दिन चल रहे हैं।
2: तो ये जो फुर्सत के दिन होते हैं, ये सिर्फ आराम करके गुजारते हैं या इसमें कोई काम करने की भी कोशिश करते हैं?
3: मैडम जी, इतनी गर्मी पड़ी है साल रिकार्ड तोड़। पहले तो ना ईद गुम्मा कहीं कुछ कर लेते गर्मियों में लोग, किसान लोग। इस साल जो है बहुत गर्मी पड़ी तो आदमी निकल नहीं पाए घर से।
2: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे घरों में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जो किए जा सकते हैं? बच्चों के साथ समय गुजारा जा सकता है, घर में क्या चीज चल रही है, क्या है, काम में तो बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं।
3: एक हमारी सुनिएगा, ये घर का काम जैसे और से देखा करती, कहीं जो है पापड़ बनाना, कहीं मूंग की बरी बनाना, ये सब चलता रहता। अब लोग बागों का काम थोड़ी है, ये देहात में पड़ गए जो है, शहर में तो लोग बाग कुछ ना कुछ करते ही रहते।
2: काम कभी ऐसा थोड़ी कहता है कि हम देहात में हैं तो हमें आप नहीं कर सकते हो।
3: नहीं नहीं नहीं, और कोई काम नहीं रहता ना।
2: बात आपकी बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारा थोड़ा सा आग्रह कह लीजिए या सोच ये है कि घर के बाहर के काम और पैसे कमाने के काम ही नहीं होते हैं सिर्फ, घर के भीतर के भी काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर की महिलाओं के साथ रसोई घर में ही काम करें या हाथ बटाएं, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है यदि ऐसा करते हैं तो, लेकिन बच्चों के साथ समय गुजार सकते हैं।
3: पहले आप बताएं जो है, दीदी जी आप बोल कौन रहे?
2: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
3: अच्छा जी जी जी जी
2: जी, बताइएगा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: तुम मुझे सुनना है फिल्म एक महल हो सपनों में, सपनों का
2: जी
3: लता जी ने गाया है। मैं किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से ये भूले बुझेगा क्या।
2: पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
3: जी जी जी जी, धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: फोन करेंगी सुने कार्यक्रम।
1: हाँ अमिता जी नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
1: मैं ग्राम उजान बोल रहा हूँ, गेंद्रलाल परिहार।
0: श्री परिहार जी कैसे हैं?
1: बढ़िया मैम जी।
0: क्या चल रहा है?
1: मैं बैठे हैं फ्री, तो फोन लगा रहे हैं, गाना सुन रहा है।
0: क्या बात है जी। हम ये पूछ रहे थे कि जब आप लोग बिल्कुल फुर्सत में होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं लगता कि घर परिवार के साथ या बच्चों के साथ समय गुजारा जाए?
1: हाँ सब, अभी क्या हूँ, गर्मी ज्यादा पड़ रही, सब बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। क्या
0: उनसे दोस्ती करने की, उनको जानने समझने की कोशिश की है?
1: हमें, मैं दो पोते हैं छोटे छोटे
0: जी,
1: तो उनके साथ में रहता हूँ, जब उनको समय बिताता हूँ उनके साथ में।
0: समय बिताते हैं तो कुछ खेलते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं या?
1: अभी क्या, 5 साल का है वो स्कूल जाता है, अभी छोटा है 2 साल का है। तो उसकी छुट्टी चल रही है, अभी मामा घर गया है बड़ा वाला, तो छोटा है साथ में, तो उसके साथ खेलते रहते हैं।
0: ये हम ऐसा लगता है कि जो फुर्सत का समय है उसे यदि हम अपने घर परिवार के साथ गुजारते हैं तो रिश्ते और बेहतर होते हैं, मजबूती से बन पाते हैं।
1: जी
0: तो बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम फिल्म का नाम है वो 7 दिन।
0: वो 7 दिन,
1: इसका गाना है कंगना कंगना।
0: आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद
1: जी मैम। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो नमस्ते
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: हरियाल जाटल, जिला सिपी, मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी बढ़िया है, मौसम ठंडा है थोड़ा सा, कल पानी बस गया दो दिन।
0: अरे वाह,
1: और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी राहत मिल गई है, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो सिर्फ पानी गिरा या थोड़ा आंधी तूफान भी आया?
1: हाँ आंधी भी आया, तूफान भी आया, आंधी ना पानी दोनों बराबर थे।
0: दोनों बराबर थे। कौन सा गीत कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: हमको सुना दो दिल तो पागल है।
0: इसका कौन सा गीत है?
1: गाने के बोल भी यही है और फिल्म का नाम भी यही है।
0: पहुँच रहा है आपकी पसंद का गीत आप तक।
1: मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: मैंने मोबाइल से सुनता हूँ रेडियो, तो आजकल इससे मिस्टेक आ रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं।
0: क्या दिक्कत आ रही है उसमें?
1: दिक्कत ये आ रही है कि माने कल शाम को 5:30 बजे खुला और 6:30 बजे बंद हो गया। समझो एक हफ्ते से माने रेडियो नहीं सुन पा रहा हूँ मोबाइल पर। क्या प्रॉब्लम आ रही है?
0: प्रॉब्लम जब अपन मोबाइल से सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने मोबाइल की भी हो सकती है और नेटवर्क की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो
1: नेटवर्क तो ये मान लो कि अपन एयरटेल का फोन चला रहे हैं सादा वाला।
0: कई बार जैसे मौसम आपने कहा खराब है ना?
1: हाँ,
0: मौसम का बहुत फर्क पड़ता है नेटवर्क पर, दोनों ही नेटवर्क पर, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो या आकाशवाणी के कार्यक्रम जिन ध्वनि तरंगों से आप तक पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा सा
1: कभी कभी एक घंटा के लिए, कभी दो घंटे, कभी एक हफ्ते से परेशानी आ रही है।
0: उसको आप एक काम कीजिएगा, एक बार पूरा बंद करके रिस्टार्ट कीजिए और जो आपका मोबाइल ऐप है जिसपे आप सुनते हैं उसे रिफ्रेश कर लीजिएगा। संभवतः जो दिक्कत आपको आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है,

0: फोन कर रही गीत सुने कार्यक्रम
1: जी। मेरा नाम मोलिना रॉय है, मैं सतना से बोल रही हूँ।
0: मोलिना
1: मोलिना
0: मोलिना, वाह, एक नए तरह का नाम है, तो इसका मतलब मीनिंग जान सकते हैं क्या होता है?
1: हाँ, वैसे तो संस्कृत में एक शब्द है मलिन
0: जी,
1: तो उसी का ही वर्जन जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया
0: जी, जी जी।
1: तो मोलिना का मतलब होता है मन की मलिनता को दूर करने वाला।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: थैंक यू।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी छोटी सी फुल्की की दुकान है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फुल्की आप घर पर ही बनाती हैं?
1: हाँ, सब मटेरियल में घर का बिना कलर यूज किए प्राकृतिक रूप का बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बनाने का काम भी आप करती हैं और दुकान लगाने का भी आप करती हैं, या उसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं?
1: मेरे परिवार, मेरी दो बेटियाँ और मेरे हस्बैंड और मैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फुल्की के साथ और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, और क्या ऐसा विशेष होता है कि लोग आपके यहाँ खाना उसे पसंद करते हैं?
1: वो जलजीरा मेन, और फुल्की की क्रंचीपन।
0: हाँ।
1: और मेरे देने का तरीका, मतलब साफ सफाई में मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि किसी प्रकार का गंदगी ना हो।
0: हाँ।
1: जितना मुझसे

0: के।
1: जी जी,
0: मैं जो सामान यूज करती हूँ वो अच्छे वाले करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए यदि मैं अच्छा सोच सकती तो और बच्चे जो आते हैं तो वो भी मेरे लिए, मेरे बच्चे समान ही हैं, तो मैं उन्हें अच्छा दूँ।
1: जी जी, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चीज दे रहे हैं वो ताजी हो और स्वच्छ हो, तो उसका स्वाद तो जो होता है वो आता ही है, साथ ही सेहत पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। एक चीज और जानना चाहेंगे आप कि आपको ऐसा लगता है किसी जगह विशेष पर दुकान होने से ज्यादा फायदा होता है चीजों में?
0: जी बिल्कुल, आप यदि कोई काम कर रहे हो और वो एरिया देखा जाए कि लोकेशन, मतलब वो कितना अच्छा काम करेगा, और आप अपना काम भी यदि अच्छा रखेंगे तो शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ धीरे धीरे आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है तो एक टाइमिंग बन जाती है कि इतने समय में वहाँ ये चीज मिल जाएगी
1: जी।
0: तो उसी समय मेरा जैसे बंदा हुआ कि मैं सिर्फ इवनिंग में खुलती हूँ और मॉर्निंग में मैं अपने घर का काम करती हूँ, दुकान का काम करती हूँ, बच्चे कॉलेज जाते पढ़ने के लिए, तो उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, जब वो आते हैं तो मेरा सारा सामान सेट कराते हैं, गाड़ी में रखवा के देते हैं, फिर मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बल्कि आपसे बात करके, जानकर तो अच्छा लगा ही
0: जी।
1: लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि अपन किसी भी काम को यदि बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो यकीनी तौर पे हमें काम करने का एक संतोष तो मिलता ही है, हमारा नाम और हमारी चीज दूर दूर तक पहुंचती है। तो बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
0: वीर जारा का
1: कौन सा?
0: जी, दो पल के यादों का कारवा।
1: पहुंच रहा है आप तक, धन्यवाद।
0: मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।

0: फोन कर रही हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्ते,
1: इंदौर से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी अनिल जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी एकदम बढ़िया है। क्या चल रहा है?
1: बस अब छुट्टी का समय खत्म हो रहा है मैडम, कल से स्कूल चालू हो जाएंगे।
0: अच्छा, कल से ही शुरू हो रहे हैं?
1: हाँ हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं।
0: जी जी।
1: तो एक्चुअली क्या 3 तारीख से 9वीं और 11वीं के एग्जाम है।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये टीचर्स के लिए छुट्टियाँ धीरे धीरे धीरे कम से कम ही होती चली जा रही हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपके हिसाब से आपकी नए सेशन के लिए?
1: बच्चे जो नए आएंगे उनको हमको स्वागत करके और मोटिवेट स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है कि आप अभी पुराने स्कूल में थे जब तक आपने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब ये बड़ी क्लास हो गई है तो इसमें तुम्हारा कोर्स भी बढ़ गया है, आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी पहले की अपेक्षा।
0: जी जी।
1: क्योंकि मिडिल और प्राइमरी के बच्चे होते हैं तो हाई स्कूल में थोड़ा कोर्स बढ़ जाता है।
0: और आपको ऐसा लगता है अनिल जी कि ये सब करके बच्चे थोड़े मोटिवेट होते हैं?
1: मैडम कहना चाहिए ये टीचर को ये जो सब गाइड करता है तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं बात को।
0: जी जी,
1: ये वाली बात है।
0: हाँ, अच्छी चीज है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिर तेरी कहानी याद आई मैडम।
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: दिल देता है रो रो दुआई, किसी से कोई प्यार ना करे।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
1: ग्राम सोराना जिला शेख हैदर खान बोल रहे हूँ
0: जी। खान साहब कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है। खेत में मैडम
0: क्या काम चल रहा है खेत में अभी?
1: अभी तो बस अगली फसल की जो सोयाबीन बोएंगे खेत में बस उसी की तैयारी चल रही है। अब पर्याप्त पानी गिरेगा तो बोनी होगी।
0: बिल्कुल, तो बोने के पहले जो खेत की तैयारी होती है वो किस चीज से कैसे करते हैं आप?
1: अभी तो गहरी जुताई जैसे कल्टीवेटर है पंजा है इस तरह करते हैं।
0: तो कितने दिन लग जाते हैं खेत की तैयारी में?
1: मैडम आपको क्या बहुत से साधन है, ट्रैक्टर के पास 2-4 दिन की मुश्किल से।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: ये यादगार फिल्म का सुनना है
0: जी।
1: लता जी की आवाज में गीत है जिस पथ पर चला।
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।
1: ओके ओके, थैंक यू है ना जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, फोन करेंगी पुणे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी,
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या हो रहा है इस समय?
1: अब इस समय तो मैडम जी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़ी देर बाद गेहूँ बाकी मक्का का की कटाई होने वाली है। फरुखाबाद
0: फरुखाबाद का मौसम क्या कह रहा है?
1: का मौसम तो ये है, 45 तापमान पहुंच गया, 45 पे।
0: इस समय तापमान लगभग सभी जगह इतना ही हो रहा है, और जितना तापमान मीटर स्केल पे कि 45 है कि 42 है कि 43 है, उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है इस वक्त।
1: हाँ, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी तो मौसमी फल का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कलिंदे, खरबूजा, ककड़ी, खीरा है, और उनका सेवन करना चाहिए। खीरा है तो उनका
0: जी,
1: सेवन करना चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और पक्षियों को पानी रखना चाहिए। कहीं भी छत पे हो तो उनको पानी पर रखना चाहिए, दाना पानी रखना चाहिए, और भैंस पगु का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी पानी टाइम से देना चाहिए, चारा पानी टाइम से देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये सब करना चाहिए या आप भी करते हैं?
1: करना चाहिए और करते भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: आज शुरुआत फिल्म का नाम है दिल,
0: दिल।
1: और गाने बोला ओ प्रिया प्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो
0: फोन करें कि सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सरौन जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: कैसे हैं आप?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं।
0: और क्या काम चल रहा है?
1: अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, फुर्सत है अभी तो बारिश का इंतजार है।
0: बारिश का इंतजार है तो ये फुर्सत का समय कैसे निकालते हैं?
1: जी कुछ नहीं, मोबाइल के जरिए से मोबाइल फोन लगाते हैं, फिल्म संगीत सुनते रहते हैं।
0: अच्छा।
1: टाइम गुजर जाता है, कुछ टाइम निकल जाता है, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम है त्रिनेत्र।
0: त्रिनेत्र
1: जी
0: जी, इसका कौन सा गीत?
1: एक गाना है ना कुमार सानू की आवाज में, धर्मेंद्र और मिथुन दादा पे शर्मा गया है, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद
1: जी, धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वह उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEADV.ac.in पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में BNP के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस साल मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। स्वर प्रीति सागर के हैं, गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बेरड़ी से और श्रोता हैं राजेश, गुंजन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

मन्ना डे और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शोले से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आरडी बर्मन। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से, श्रोता है श्रद्धा, अभय, परम, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता धामनी से है, समयलाल, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत को सुरों से सजाया मोहम्मद रफी ने, गीतकार है मजरू, संगीतकार आरडी बर्मन। फरमाइश इसके लिए आई है हमें नेपाल पैलेस सागर से, श्रोता है तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता बलिया से हैं, ओम प्रकाश, ऊषा, अमित और प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवदेश, प्रीति और नवनीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता है हरदेव, बलविंदर, जयतेग और मीरा।

अगला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश हमें आई है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से। श्रोता है राधिका, अनिष्का और तन्मय। साथ में है रोशन, कौशल्या, हेमलता, देवांगन, डिंपल। अगले श्रोता दतरेंगी से है, द्वारिका, किशोर, दीपक और झावेंद्र। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां का छठवां भाग।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता बकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की छठी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सायरा मुश्ताक को अपने घर वालों से अलग होकर रहने के लिए कहती है। इस बात पर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिए बिना वापस लौट जाता है। फाता सायरा को मुश्ताक से तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगती है। और अब आगे।

0: आओ फाता, आओ बैठो। कैसे आना हुआ?
1: अरे बहुत जरूरी काम था तुमसे।
0: कहो क्या काम है?
1: नहीं, पहले कबूल करो कि ये काम करोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे।
0: अरे पहले काम तो बताओ।
1: नहीं नहीं, पहले कबूल करो।
0: अच्छा कबूल करता हूँ, किसी से नहीं कहूँगा।
1: एक तलाकनामा भिजवाना है।
0: तलाकनामा किसका?
1: सारे का।
0: सारे का तलाकनामा?
1: हाँ सारे का तलाकनामा। मैं चाहती हूँ कि मुश्ताक सारे को तलाक दे दे तो मैं उसका निकाह कहीं और कर सकूं।
0: फाता, लेकिन मुश्ताक में क्या कमी है?
1: अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसने मेरे सामने ही सारे को मारा था?
0: सुना तो था, पर इसका ये नतीजा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम था।
1: अरे मुझे ही क्या मालूम था कि मेरा अपना सगा भाई ऐसा निकलेगा और वो उसका लड़का मुश्ताक। अरे देखने भर से ही शरीफ लगता है। अरे खुदा ना करे किसी को ऐसा शौहर मिले जो एक माँ के सामने उसी की बेटी को मार सकता है, वो पीछे कैसा बर्ताव करता होगा?
0: सो तो है, पर यह तो सारे घरों में होता ही रहता है। थोड़ा ऊंच नीच तो चलता है।
1: हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, मैं भी मानती हूँ, पर पानी जब सर से ऊपर उठ जाए तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना।
0: सारे इस तलाकनामे को मानेगी?
1: मानेगी क्यों नहीं, मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ ये सब।
0: फाता एक बार तुम सोच लो, इतनी जल्दबाजी क्या अच्छी है? सारे और मुश्ताक के बारे में तो सोचो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार? हाँ करते थे, अब नहीं। मैंने जो देखा है उसके बाद तलाक होना ही एक जरिया है जो मेरी बेटी को बचा सकता है।
0: तुम्हारे घर की बात है तुम जानो। हाँ मुझे कब जाना है?
1: अच्छा तो सुनो, कल ही तुम मुश्ताक से मिलकर तलाकनामे पर

0: सहमति ले लेना और उस पर दबाव बनाना कि तलाक के लिए मान जाए।
1: ठीक है, मैं कल ही मुश्ताक के पास जाता हूँ।
0: और याद रहे, काम होने से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।
1: जैसा तुम ठीक समझो, मैं किसी से नहीं कहूँगा।
0: ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।

0: फजी, वक्त कितना बदल गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की सुनना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, उनके ख्यालात बदल रहे हैं और हमारे ख्यालात जैसे पीछे छूट गए हैं। अब उनके और हमारे ख्यालात मेल नहीं खाते।
2: करीम चाचा, करीम चाचा, आपसे कोई बाहर मिलने आया है।
0: कौन है?
2: वो मैं नहीं जानता, आपका पता पूछ रहा था। वो बाहर खड़े हैं।
0: कौन हो सकता है? अच्छा जा, उन्हें अंदर भेज दे।
2: ठीक है चाचा।
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं।
4: मैं मुश्ताक से मिलने आया था।
0: कहिए, क्या काम है मुश्ताक से?
4: फाता ने तलाकनामा भिजवाया था।
1: तलाकनामा?
0: फाता ने तलाकनामा भेजा है?
4: फाता चाहती हैं कि मुश्ताक सादे को तलाक दे दे।
0: क्या? ये आप क्या कह रहे हैं?
4: फाता ने जो कहा मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक को बुलवा दे तो बेहतर होगा।
0: खुदी, मुश्ताक को तो भेजना।
1: हाँ, भेजती हूँ।

0: तो आप आए हैं?
1: हाँ, मैं तलाक नामा लाया हूँ।
0: अगर आप अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। इस मुद्दे पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा।
1: नाराज होने की कोई बात नहीं, जब सारे ही तलाक चाहती हैं तो आपको क्या परेशानी है उसमें?
0: नहीं, यह सच नहीं है। सारे ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे तलाक नहीं ले सकती।
1: मुस्ताद, मैं तलाक का संदेशा लाया हूँ और आप सारे को तलाक दे दे, सारे भी ऐसा ही चाहती हैं।
0: आप अपनी काली जुबान को बंद करें और यहाँ से चले जाएं। यही आपकी बेहतरी के लिए ठीक होगा।
2: मुश्ताक, घर आए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते।
0: मेहमान? मेहमान मेहमान की तरह होते हैं, यूं तलाकनामा लेकर नहीं आते।
2: आप अभी जाएं, एक बार फाता से बात कर लेने के बाद हम कुछ जवाब देंगे।
1: सुनिए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं। सारिये भी यही चाहती हैं कि मुश्ताक उसे तलाक दे दे, और इसलिए फाता ने मुझे तलाकनामा लाने को कहा है।
0: लाइए, मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: मुश्ताक, ये तुम क्या कर रहे हो?
0: अगर सारे यही चाहती है अब्बू कि वो मुझे तलाक दे, तो मैं तलाकनामा लिख देता हूँ।
2: गुस्सा न करो मुश्ताक, वक्त की नजाकत को समझो। ये वक्त आराम से सोचने और इस परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचने का है, न कि गुस्से में गलत फैसला लेने का।
0: ये गलत फैसला नहीं है अब्बू। जब सारे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही बेहतर होगा।
2: मुश्ताक, परेशानी का ये हल नहीं है, तुम्हें समस्या की तह तक जाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह होगी जिसने तलाक लेने की नौबत ला दी।
0: अब्बू, सारे चाहती है कि मैं आप लोगों से अलग रहूं। और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सारे मुझसे तलाक चाहती है।
2: जहां तक मैं जानता हूं, सारे ऐसा नहीं कर सकती। देखो मुश्ताक, तुम जरा फिर से सोच लो। तुम्हारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी

0: जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो सारे नादानी कर रही है, उसे समझाया जा सकता है। बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते टूटते, इतनी जल्दी ना करो, हमें जरा सोचना चाहिए।
1: अब्बू अब्बू कोई फायदा नहीं है, मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ।
2: मुश्ताक जल्दी ना कर बेटा, सारे अच्छी लड़की है और नेक दिल भी, कहीं कुछ दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश कर बेटा। सारे अगर तेरे साथ रहना चाहती है तो यही सही, तू कुछ दिन उसके साथ अलग रह ले, तू समझाएगा तो शायद मान जाए।
0: हाँ बेटा।
1: नहीं अम्मी, वो कुछ नहीं मानेगी। जिसके ख्यालातों में बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत ना बची हो, उसे परिवार के बारे में नहीं समझाया जा सकता।
0: मुश्ताक, हमारे लिए परिवार अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है, जहां बाप दादाओं के साथ हमारे बच्चे उस सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। लेकिन समय बदल रहा है बेटे, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में सारे का ये सोचना कि वो तुम्हारे साथ अलग रहे, तो इसमें गलत क्या है?
1: अब्बू अब्बू आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखती और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप यही चाहते रहे हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, और इसीलिए आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सारे की बातों को मान लूं। यह मुझे कबूल नहीं है अब्बू, और आप मुझ पर यह मानने का दबाव भी ना डालें।
0: मुश्ताक, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो फैसला तुम कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं, और ये तुम्हारे और सारे के लिए भी ठीक नहीं। देखो देखो बेटे, हम फाता और हसन भट से बात करेंगे, वो इस मसले का हल निकालेंगे।
1: अब्बू अब्बू आप हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं।
0: हाँ बेटे,
1: पर सारे ऐसा नहीं सोच रही। फाता ने तलाक नामा लाने को आदमी भेजा है और अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं।
0: देखो बेटे,
1: मैं तलाक नामे पर दस्तखत कर देता हूँ, ये लीजिए।
2: मुश्ताक मुश्ताक
1: बेटा,
2: मुश्ताक मुश्ताक दरवाजा खोल मेरे बच्चे, मुश्ताक मुश्ताक दरवाजा खोल मेरे बच्चे, दरवाजा खोल, अजी सुनते हो, मुश्ताक ने दरवाजा बंद कर रखा है।
0: क्या
2: मुश्ताक?
0: अरे मुश्ताक ऐसा ना कर बेटा, देख देख पहले ही कह रहा था जल्दी ना कर, अरे अब हमें सजा ना दे बेटा, दरवाजा खोल बेटा।
2: मुश्ताक दरवाजा खोल दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे इसका गम है, पर अपने साथ जुर्म ना कर बेटा, बाहर आ जा, आ जा बेटा, दरवाजा खोल,
0: दरवाजा नहीं खोलेगा।
2: अजी कैसे नहीं खोलेगा, खोलेगा क्यों नहीं, मुश्ताक दरवाजा खोल बेटा, खोल दे।
0: वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुम्हारी और हमारी बात सुने और माने। छोड़ दो उसे, जब भावनाओं की चोट लगती है तो ऐसा ही होता है, वो सारे से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब हमें सारे के इस फैसले से तकलीफ हो सकती है तो भाई मुश्ताक की हालत तो और भी खराब होगी, आखिर सारे उसकी बेगम रही है।
2: मुश्ताक का ये हाल उसी के कारण है। अरे यहाँ भी तो अच्छी भली थी, मायके गए तो ना जाने क्या हो गया।
0: अरे अब छोड़ो उसे, अब हमें मुश्ताक को संभालना है।
2: पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता।

0: पाता पाता, देख मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
1: लगता है काम हो गया। काम हो गया क्या?
0: होता क्यों नहीं, पहले तो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए थे, लेकिन मैं भी अड़ गया कि तलाक नामा तो तुम्हें देना ही होगा, सो आखिर मुश्ताक को मानना ही पड़ा।
1: और मुश्ताक के अब्बा करीम नहीं थे?
0: करीम तो था, पहले तो मुश्ताक को समझाया, फिर मुश्ताक ने तलाक नामा पे दस्तखत कर दिया और करीम भी चुप हो गया।
1: तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब सारे और मुश्ताक को तलाक से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए मुबारक दिन है या अल्लाह।
0: अच्छा तो अब मैं चलता हूँ।
1: इस तलाक नामे की खबर अभी किसी को ना देना।
0: जैसा तुम कहो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ।

0: अम्मी
1: अम्मी
2: हाय सारे तुम
1: अम्मी किसके तलाकनामे की बात कर रही हैं?
2: किसी की नहीं, तुम जाओ अभी, तुम जाओ।
1: बताओ ना अम्मी, ये किसका तलाकनामा है?
2: अरे हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई।
1: तो रो क्यों रही है?
2: अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खोटा निकला।
1: बेबचा अपने नसीब को क्यों कोस रही है अम्मी?
2: ना कोसूं तो क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था कि मेरे भाई का लड़का ही ऐसा करेगा।
1: आखिर हुआ क्या है अम्मी?
2: ये तलाकनामा आया है।
1: तलाकनामा?
2: हाँ तलाकनामा, मुश्ताक ने भेजा है।
1: क्या? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता अम्मी।
2: नहीं कर सकता? मुश्ताक ने ऐसा ही किया है, उसने तलाकनामे पर दस्तखत भी किए हैं।
1: नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता।

0: अरे पाता, ये क्या हो रहा है? सारा क्यों रो रही है?
1: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है।
0: क्या मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है?
1: हाँ, अभी एक आदमी मुश्ताक का तलाक नामा लेकर आया था, जिस पर मुश्ताक के दस्तखत भी हैं।
0: मुश्ताक ने तलाक नामा भेजा है? नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ, करीम व फजी से बात करनी होगी।
1: अरे अब कोई फायदा नहीं है, मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।

0: जिसने सारे को बदनाम किया उसके दहलीज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: फातिमा, अगर कहीं गलती है तो हम उसे दूर कर सकते हैं, पर हमें पता तो चले कि तलाक देने की वजह क्या है।
0: अरे वजह जो भी हो, तलाकनामा भेजने के बाद हमारा मुश्ताक से कोई रिश्ता नहीं है।
2: मुश्ताक,
1: सारे सारे बेहोश हो गई। फाता, पानी लाओ, उठाओ इसे।
0: अभी लाती हूँ।
1: अरे जल्दी करो।

0: अरे अरे सुनो भाई, सुनो सुनो,
1: हाँ
0: कुछ कुछ बातें करनी हैं, बहुत जरूरी।
1: कहो फाता, क्या काम पड़ गया?
0: अरे भाई, एक लड़का ढूंढना है,
1: लड़का किसके लिए?
0: अपनी सारे के लिए।
1: सारे के लिए?
0: अरे हाँ, मुश्ताक ने तो सारे को तलाक दे दिया है ना, अब उसका दूसरा निकाह करूंगी।
1: फाता, जो लोग सारे को जानते हैं वो उससे निकाह करेंगे नहीं, सो लड़का ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
0: या खुदा, मुश्किल क्या है, सारे को एक बार जो देख ले वो निकाह से इनकार नहीं कर सकता।
1: हाँ वो तो है, लेकिन सारे के लिए कैसा लड़का चाहिए?
0: देख, लड़का ऐसा हो
1: हाँ
0: जो अच्छा खाता कमाता हो,
1: हम्म,
0: और अगर वो घर जमाई भी बनकर रहे तो मैं अपना घर उसे बड़ी खुशी से दे सकती हूं।
1: देखता हूं, अगर ऐसा लड़का मिलता है तो मैं बताता हूं।
0: लेकिन भैया, ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब तू जा।
1: जी जाता हूं, अगर कोई बात बनी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज बेटा।
2: पाता, ये आदमी क्यों आया था?
0: काम था।
2: उस आदमी से क्या काम पड़ गया तुम्हें?
0: अरे सारे के लिए लड़का ढूंढने को कहा है।
2: फाता, तू ये क्या कर रही है?
0: ओफो, अपनी सारे के लिए लड़का देख रही हूं, और उसके लिए भी यही ठीक होगा, शादी करके अपने घर चली जाए।
2: फाता, अभी अभी उस बेचारी को ये सदमा लगा है और तू उसके लिए एक लड़का देख रही है?
0: या खुदा, उसके भले के लिए ही कर रही हूं, मुश्ताक और उसके घर वालों को मैं दिखा दूंगी कि मेरी लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है।
2: अरे फाता, ये समय सारे को सहारा देने का है और तू उसे एक और सदमा देना चाहती है?
0: मैं सारे को रानी बनाना चाहती हूं।
2: फाता, जमीन पर रह और जमीन की सोच, आसमानों के ख्वाब पूरे नहीं होते। बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी और उसका सदमा वो अभी झेल भी नहीं पाई है, और तुम उसके लिए?
0: अरे बंद करो ये अपनी काली जुबान, जब देखो तो बुरा ही सोचोगे। अरे कभी तो अच्छा बोला करो।
2: आता,
0: एक बात सुन लो मेरी, मैं सारे की शादी करूंगी, और अगर तुम सारे की खुशी चाहते हो तो चुपचाप सिर्फ देखते रहना।

0: तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1: वादा, तुम सारे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम माँ होकर उसके भले के नाम पर तुम पाप कर रही हो। मुझे दुख है कि तुम माँ होकर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही हो।
0: बेटी की फिक्र है लेकिन तुम्हें नहीं। इंशाल्लाह अब मैं सारे के लिए ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो खूब दौलत कमाता हो और सारे से मोहब्बत करे, साथ ही हमारी भी मदद कर सके।
1: वादा, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी इन बातों से। अरे बाप हूं मैं उसका, उसकी खुशी की फिक्र मुझे भी है, पर मैं तुम्हारी तरह मतलब फरोश नहीं हूं जो अपने सुख के लिए बेटी का रिश्ता किसी पैसे वाले को दे दूं।
0: अम्मा चुप करो, या खुदा आज तक कोई काम मुबारक तरीके से करने दिया है मुझे? और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जाकर रहो उस चौकीदारी कोठी में। मैं तुमसे पूछने नहीं जाऊंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
1: अरे फादर, तुम हमें सुकून से जीने दोगी या नहीं, या अपनी इन्हीं करतूतों से हमें परेशान करती रहोगी? अरे कभी तो चैन की जिंदगी बसर करने दो।
0: अम्मा मिया, चैन की जिंदगी बसर करने के लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और वो तुम्हारे पास नहीं है।
1: फादा, पैसों से चैन नहीं मिलता, समझी? और अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कभी चैन नहीं मिलेगा।
0: जाते क्यों नहीं? अगर इतना ही दुख है मेरे काम से तो जाओ, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत भी नहीं है। अब जो करूंगी मैं अपनी मर्जी से करूंगी।
1: या खुदा, तूने इसे किस मिट्टी का बनाया है। जाता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, में सिसकियों का भाग छी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी कार्य को स्वयं करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य लोग उस ज्ञान या कौशल को दूसरों को सिखाने में निपुण होते हैं। जो सिखाने की क्षमता रखता है वो उच्च श्रेणी के शिक्षकों में स्थान पाने के योग्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम jeeadvance.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में अपने द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि उत्पादन भी बढ़े और खेत भी सुरक्षित रहे। प्रदेश में अभियान की शुरूआत आज रायसेन से लेकर गांव से की जा रही है। और वियतनाम के दानांग में 17 वर्ष से कम आयु की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकारें अपनी रेडियो दोस्त दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त और मस्त भी होंगे, साथ ही हमारे कार्यक्रमों को भी सुन रहे होंगे। श्रोता मित्रों, स्वास्थ्य और मस्त रहना हमारे हाथ में होता है, बस जरूरत होती है सतर्कता और जागरूकता की। अब जैसे हम बात करें कि हम अपने हेल्थ नंबर की, तो ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखकर डिजिटल रूप से एक जगह लिंक करता है, जिसे आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी कहा जाता है। यह नंबर आपको देश भर में एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देता है, जिसके जरिए आप डॉक्टर के पर्चे, लेबोरेटरी की रिपोर्ट और दवाइयों का विवरण डिजिटली रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, जिसे आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री कहीं भी कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आप इसे आभा पोर्टल या मोबाइल नंबर आधार कार्ड का उपयोग करके भी बना सकते हैं। कोई भी नागरिक aabha.gov.in पर जाकर अपना आभा नंबर बना सकता है। इस नंबर से आप अपनी डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य इतिहास को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, सही जानकारियां हमें सुविधा और सुरक्षा दोनों में मदद करती हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सहजता से उचित व्यवहार करके अनुकूल परिस्थितियों में वापस आ सकते हैं। तो आप भी इस बात से तो सहमत होंगे, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक भेंट वार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं घुटनों का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजबी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूँ मनीष गजबी। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। चलने फिरने में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्या लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है, क्या समय रहते इससे बचाव संभव है और आधुनिक चिकित्सा में इसके कौन कौन से प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप जैन को। आप वरिष्ठ ऑर्थोपेडिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है और यह किन वजह से होता है?
2: देखिए, घुटनों के दर्द के एक तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
2: उनमें से यदि चोट लगी है
1: जी,
2: तो अपन ये देखेंगे कि घुटने की कौन सी हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, या उसके अंदर में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, तो क्या कहीं उसमें इंजुरी है, इंजुरी के कारण चोट है तो वो बात अलग है। या इसके अलावा ओवर वेट है, इंसान का वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, या उसको थायराइड है, या यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा हाई है, या कई और दूसरे रोग हैं, इन्फेक्शन अगर है, फीवर है, चिकनगुनिया है, उसके भी कारण से घुटनों में दर्द पॉसिबल है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और यह किस कारण से होता है?
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आजकल, और एज के साथ का ताल्लुक है। घुटने के अंदर का जो ज्वाइंट रहता है उसमें बोन के ऊपर में कार्टिलेज नाम की एक चीज रहती है, वो कार्टिलेज उम्र के साथ साथ थोड़ा घिस जाता है। सभी का घिसता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। जो उस कैप्सूल के ज्वाइंट के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण जो अपने को घुटने में दर्द होता है उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं
1: जी।
2: ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोला जाता है
1: जी।
2: और भी कई हैं कारण, जैसे कि अपने रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सारे कारण घुटने के दर्द के हैं, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, जो एज के साथ साथ होता है।
1: जी जी जी। महिलाओं में अक्सर देखा गया ये समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
2: जी जी, महिलाओं में ज्यादा होने का कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर काम घर में या किचन में भी करती हैं, तो वो बैठ के करती हैं
1: जी।
2: और जैसे कि पालथी मार देती हैं, पूजा अगर करती हैं तो वो भी बैठ के होती है।
1: बिल्कुल।
2: और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर भारतीय महिलाओं की हाइट वो थोड़ी कम रहती है,

0: वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स जिसको अपन BMI कहते हैं, तो उससे उनके घुटनों पे काफी ज्यादा आता है लोड, जिसके कारण से ये लेडीज में ज्यादा होता है
1: जी।
0: दूसरा एक कारण है कि जो भारतीय महिलाएं वो अपने खान पान का उतना ध्यान नहीं रखती हैं, ज्यादातर जो अच्छा खाना है या जो पौष्टिक भोजन है वो अपने फैमिली के बच्चों को या अपने हस्बैंड को पुरुषों को दे देती है और अपने ऊपर उतना ध्यान
1: नहीं देती।
0: तो उनको पूरे पोषक तत्व जो है विटामिन डी है कैल्शियम है वो चीजें नहीं मिल पाती, ये भी एक कारण है कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। अब डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: देखिए, घुटनों का दर्द ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग खासतौर से लेडीज महिलाएं उसको उतना ध्यान नहीं देती, वो ये मानती है कि अब हमारी एज हो गई है या पीरियड आना बंद हो गया, मीनो पॉज हो गया, उसको वो लाइफ अंग मान लेती है कि ये तो चूंकि एज हो गई तो ये हमको हो गई होगा। पर जैसे लक्षण जो आपने कहा कि कौन से ऐसे हैं जिसको अपन माने के अपने को जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें मेन ये है कि जब अपन अपने नॉर्मल काम रोज के जब अपने को करने में दिक्कत होने लगे और जब मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़े, अपने को रोज डेली जो है आपका काम जो है बगैर गोली खाके ना हो, और कई बार गोली खाने के बाद भी आपको लगे कि उतना आराम नहीं हो रहा।
1: जी जी जी।
0: और जो नॉर्मल काम है जैसे पालथी मारना है या इंडियन टॉयलेट पे बैठना है, स्क्वैट करना है, उकड़ू बैठना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, तो ये जो रोजमर्रा के नॉर्मल काम है अगर इनमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता
1: है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और आपको किसी भी तरह की परेशानी ज्यादा बढ़े उससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से संपर्क कर किससे की परामर्श आप अवश्य लें। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द की जांच किस तरह की जाती है? क्या आज के आधुनिक युग में एक्सरे, MRI या अन्य जांच किस समय आवश्यक होती है जब हमें लगता है कि हमें इसे कराना ही चाहिए?
0: देखिए, जब आपको नी में पेन स्टार्ट हो, घुटने का दर्द शुरू हो, सबसे पहली जो बेसिक जांच होती है वो एक्सरे होती है।
1: जी,
0: घुटने के एक्सरे स्टैंडिंग अवस्था में लिए जाते हैं। नॉर्मली किसी चीज के लिए अपन जाते हैं एक्सरे के लिए तो वो अपन किसी वो जो टेबल होती है उस पर कहते हैं आप पैर कर लीजिए, लेट जाइए, पर ये नी के लिए और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच के लिए एक्सरे दोनों घुटनों के होते हैं और खड़े होके होते हैं, लोड बियरिंग एक्सरे अपन बोलते हैं।
1: जी जी,
0: स्टैंडिंग एक्सरे।
1: जी,
0: उसमें एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, मतलब एक सामने से लिया जाता है, एक साइड से लिया जाता है। मूल जो जांच है वो एक्सरे।
1: जी,
0: इसके अलावा खून की भी कई किस्म की जांचें पेशेंट की होना चाहिए कि आखिर ये इनको क्यों हो रहा है और या इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, उतनी एज नहीं है कि जितना इनको हो रहा है।
1: जी,
0: उसके लिए कई टाइप की खून की टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की है, थायराइड की है, यूरिक एसिड की है, विटामिन डी का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल जो बॉडी में है, तो ये सारी टाइप की खून की जो जांचें हैं वो भी घुटने के दर्द के निदान में उसके डायग्नोसिस में अपने लिए आवश्यक है।
1: जी,
0: और इसके अलावा घुटने का दर्द है ये जो कार्टिलेज के घिसने के कारण हो रहा है या जैसे और भी कई होते हैं रोग, गठिया अपन उसको जो बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसके लिए एक RA फैक्टर की भी जांच होती है।
1: जी,
0: यह भी खून की जांच होती है, उसको अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं, तो ये जांच भी घुटने के दर्द के जो होते हैं पेशेंट तो उसमें की जाती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हर घुटने के दर्द की सर्जरी की आवश्यकता होती है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल धारणा ये है कि साहब हम घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने खराब हो गए और आपका घुटना चेंज होगा, ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में मेरा कहना ये है कि मरीज जब आता है डॉक्टर के पास वो काफी लेट स्थिति में आता है।
1: जी,
0: तो उसको पिछले कई सालों से घुटने में पेन होता है पर वो उस तरफ ज्यादा जो है ध्यान नहीं देता।
1: जी,
0: ना वो दवा खाता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना वो अपना वेट पे ध्यान रखता है, एडवाइस भी नहीं मानता, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी जो आवश्यक है वो भी नहीं लेता। तो चूंकि वो डॉक्टर के पास में देर से आता है तब शायद वो, चूंकि देरी से आने के कारण उसको कहा जाता है कि अब आपका घुटना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब ये गोली दवा या किसी चीज से पूरा ठीक नहीं हो पाएगा।
1: जी,
0: तो आपके घुटने चेंज होंगे। यदि व्यक्ति अपना ध्यान जो है स्टार्टिंग से ही रखे, अपने

0: पेट पे कंट्रोल रखे, और अगर कोई दूसरे रोग भी हैं जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है तो वो उसका भी इलाज ले, और मेनली कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले, तो शायद इसकी स्थिति नहीं आएगी, बिना
1: जी
0: ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए।
1: जी जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट इसकी आवश्यकता आपने बताया कि लेट आने की वजह से होती है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: जी, नी रिप्लेसमेंट आजकल काफी आसान हो गया है,
1: जी
0: और अपने इंडिया में, अपने भारतवर्ष में भी काफी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं वो अपने इंडियन जो अपनी बॉडी रहती है भारतीय स्ट्रक्चर, तो उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आजकल आ रहे हैं इम्प्लांट, स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इसलिए आसान है आजकल, और यानी रोबोटिक भी हो रहा है, और 4 से 6 हफ्ते के अंदर में आदमी नॉर्मल परिस्थिति में आ जाता है।
1: जी
0: तो नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद में जो अपन ने नया घुटना में इम्प्लांट किया है तो वो उसको काम के लायक करने के लिए 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की फिजियोथेरेपी होती है, कि जो अपन ने इम्प्लांट ज्वाइंट नया डाला है वो काम के लायक हो जाए, तो इसमें 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक का टाइम लगता है।
1: जी
0: तो 6 हफ्ते तक का टाइम आप जो मान लीजिए, आफ्टर 6 वीक्स जो है पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम।
1: जी जी जी और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान
0: जी
1: रखना
0: जी
1: है।
0: खान पान का इस चीज में काफी ताल्लुक है, स्पेशली खान पान का ताल्लुक आपके वेट से है, ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं घुटने के दर्द वाले वो उनका वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, ज्यादातर का वेट ज्यादा रहता है,
1: जी
0: तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो उस कैलोरी के हिसाब से दिन में 3 टाइम कैलोरी को आप बांट के उतना ही फूड लीजिए, लेकिन जो बैलेंस डाइट अपने को आवश्यक है पूरा प्रोटीन, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 और फास्फोरस, तो अपन को कैलोरी कम हो लेकिन जो पोषक तत्व हैं जो आवश्यक वो अपने को पूरे पहुंच जाए,
1: जी
0: और वेट भी अपना कंट्रोल रहे,
1: जी
0: तो खान पान का इस रोग में घुटने के दर्द का जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें खान पान का काफी महत्व।
1: जी डॉक्टर साहब, घुटनों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, देखिए मेनली ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम रहता है
1: जी
0: और विटामिन डी भी कम रहता है, तो ओल्ड एज के लोग भी अपना डाइट बैलेंस लें, ताकत पूरी रहे, कैल्शियम और विटामिन लें, और सबसे मुख्य चीज तो ये है कि चोट ना लगे, चोट से बचे, तो एक अपना स्टिक लिए रहें, हाथ में स्टिक लिए रहें, जितना वॉक इनसे हो पा रहा है वो करें, और चोट इनको ना लगे ये ध्यान रखें, और इसके अलावा कोई और भी जो अगर रोग है जैसे डायबिटीज है या अगर यूरिक एसिड इनका हाई है तो उसका भी इलाज लें।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने, और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के घुटनों के दर्द की परेशानी का सामना न करना पड़े?
0: वेट पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खासतौर से दूध इत्यादि का करें सेवन, जिससे अपने को कैल्शियम और विटामिन डी मिले, और घुटने में जैसे ही आपको दर्द या कुछ भी चीज शुरू हो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस माने।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये के बात सुनी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से। और आइए अब बारी एक प्यारे से गीत की है, तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बायो हैकिंग एक ऐसी ही तकनीक है जो अपने शरीर और दिमाग की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। विज्ञान, तकनीक और जीवन शैली में बदलाव की ये एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य लक्ष्य पोषण, नींद, व्यायाम और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उम्र को बढ़ाना और समग्र कल्याण करना है। बायोहैकिंग के मुख्य पहलू में शामिल हैं जीवन शैली में बदलाव, पोषण में सप्लीमेंट का सही उपयोग, एडवांस मेथड से सही पहचान और इलाज। बायोहैकिंग इस सिद्धांत पर काम करता है श्रोताओं कि हम अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को हैक कर स्वयं के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सकें, जिसमें डेटा से विश्लेषण करके छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर लाया जा सके और फिर हम स्वस्थ और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। इस बात के साथ ही आइए एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, इस समय गर्मी खूब पड़ रही है, तो बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पिएं, खाली पेट ज्यादा देर तक ना रहें। छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना जैसे पेय समय समय पर लेते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। सीजनल फलों का सेवन करें, स्वस्थ रहें।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिएगा लोक भजन। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। यह आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है, प्रस्तुत है लोक भजन।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोक भजन। ये आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रागनी तड़दे की गाई गजलें।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत. पहला गीत हमने लिया है राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज है. आज पूरा भारत आकाशवाणी परिवार सुमन कल्याणपुर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये गीत श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए है. गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का.
2: राग तेलंग आकाशवाणी के 90 वर्ष

और लीजिए एक बार फिर से सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफी को सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। कुछ और गाने आप सुनेंगे 2:30 बजे आपकी फरमाइश में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

0: कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार वर्तमान न्यायाधीश विवेक ओसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक ओसिया मूल रूप से जबलपुर के ही रहने वाले हैं। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 7वें दिन कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा। इससे तापमान में भी कमी आई है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शाजापुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और तपती धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययनरत और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कल आगरमालवा में बैठक आयोजित की गई। प्रशासन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के दूरस्थ ग्राम कामती में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए वार्डों में निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे। शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 290 लीटर शराब और बियर जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित

0: दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी

0: के तीन चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
2: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रूपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रूपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमरीका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमरीका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार कर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
1: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? पहला गीत हमने लिया है अप्रैल फूल से, मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज है। गीत लिखा है असर जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। और हमारे सभी श्रोताओं, आकाशवाणी परिवार और पूरा भारत आज सुमन कल्याणपुर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहला गीत पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मुरार ग्वालियर से कालीचरण यादव, राजकिरण, दीपक यादव, चांदी यादव, प्रमिला देवी यादव, गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश फरियाद फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में। केदार शर्मा ने इसको लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत के लिए हमें चिट्ठियां मिली हैं। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

पल्ली जी, अब आपको सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबैया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इन्होंने पसंद किया है बात एक रात की, फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और एसडी बर्मन ने संगीत दिया है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत जब जब फूल खिले, इस फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक जैन, नमन जैन, शुभम जैन, और सोनागिर दतिया से श्रेयांश जैन, विपुल जैन, इन सभी की पसंद पर। और इसी गीत को पसंद किया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: ना ना करते

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है आरडी बर्मन का। आप सभी ने चिट्ठियां भेजी हैं, इस गीत को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाबदास मानिकपुरी दतरंगी से, भागवत वर्मा ने। आप सभी की पसंद पर घर फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म में सुमन कल्याणपुर को। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और उषा खन्ना ने इसका संगीत तैयार किया है। ग्राम महसबाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुंग धाड़े, वाल्मीर धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोडकर। और इसी गीत को पसंद किया है गुजरात नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कावले, नेहा भंडसे, सीमा रुबीहा, फजल पूनम नैनवा और सुषमा सलीम ने। तो आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। साधना जैन को नमस्कार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने पिछले महीने की 17 तारीख को आयोजित हुई JEE एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उत्तीर्ण उम्मीदवार में 10,107 छात्राएं हैं। परिणाम JEEAdvanced.ac.in वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने सांस्कृतिक जगत को समृद्ध किया। और मौसम विभाग ने आज धार, खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

लीजिए एक नजर डालते हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर जो कि आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम आपको सुनवाएंगे। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें कुछ चर्चा होंगी, फिल्मी गीत होंगे या आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। शाम 5:33 पर फिल्म संगीत, 6:30 और 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकेगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:40 पर कार्यक्रम होगा आजकल और प्रादेशिक समाचार दर्शन होगा 6:45 पर। सात बजकर 21 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा लोक रंग, मंडी मौसम और कुछ गीत। विश्व दुग्ध दिवस पर कुछ बातचीत आप सुन सकेंगे। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। रात 9:30 पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। रात 10:00 आपकी फरमाइश होगी और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत

का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का राग बागेश्वरी में वायलिन वादन आप सुन सकेंगे। इसे एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन आप सुन सकेंगे।

हम आपको याद दिला दें कि रात्रि 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा का अब समापन होता है। शाम 5:02 पर मीडियम वेव पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारा कार्यक्रम होगा DTH पर। DTH पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पाल यादव और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: स्वागत है साथियों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आस्था द्विवेदी और मेरे साथ हैं
1: शिवांशु प्रजापति।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।
0: इस दुनिया में अगर कोई आपकी हार में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, आपकी गलती पर भी आपको समझाता है और आपकी सफलता में सबसे ज्यादा खुश होता है, तो वह आपके अभिभावक होते हैं।
1: दोस्तों कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं जानता, उसे बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, सही गलत का ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह सीखता है, बढ़ता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है।
0: इस पूरी यात्रा में जो हाथ हर पल उसे संभालते हैं वह उसके अभिभावक के हाथ होते हैं। शायद यही कारण है कि समाज में अभिभावकों के योगदान को सम्मान देने के लिए अभिभावक दिवस मनाया जाता है।
1: दोस्तों अभिभावक दिवस केवल जन्म देने वाले माता पिता ही नहीं होते, बल्कि वे सभी लोग होते हैं जो किसी बच्चे के जीवन को दिशा देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसे बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हैं।
0: दोस्तों आज की तेज रफ्तार दुनिया में सफलता की दौड़ इतनी बढ़ गई है कि कई बार हम अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं। हम घंटों मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन माता पिता के साथ कुछ मिनट बैठकर बात करने का समय नहीं निकाल पाते।
1: विडम्बना यह है कि जिन लोगों ने हमें बोलना सिखाया उन्हीं से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता। अभिभावक दिवस हमें इसी कमी का एहसास कराता है।
0: दोस्तों वैश्विक स्तर पर अभिभावकों के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 में 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
1: इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के उन माता पिता और अभिभावकों को सम्मान देना है जो अपने बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।
0: दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एक मजबूत समाज और बेहतर भविष्य की शुरुआत मजबूत परिवार से होती है और परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अभिभावक होते हैं।
1: इसलिए हर वर्ष 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है।
0: दोस्तों मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिन बच्चों को

0: को अपने अभिभावकों का प्यार, प्रोत्साहन और भावनात्मक सहयोग मिलता है, वे अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।
1: दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना मिल जाएं, अपने अभिभावकों को कभी मत भूलिए। वे उस पेड़ की जड़ों की तरह हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा वृक्ष उन्हीं के सहारे खड़ा रहता है।
0: इसलिए अभिभावक दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन के उन अनमोल लोगों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिनके बिना हमारी पहचान अधूरी है।
1: तो साथियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी अभिभावक दिवस के बारे में, और मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में। स्वस्थ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ जीवन की नींव अच्छे पोषण पर टिकी होती है। दूध एक ऐसा पोषक आहार है जिसने सदियों से मानव जीवन को ऊर्जा, शक्ति और पोषण प्रदान किया है।
1: साथियों, हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल दूध के महत्व को बताने के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों, पशुपालकों और डेयरी कर्मियों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिनकी मेहनत से दूध हमारे घरों तक पहुंचता है।
0: वर्ष 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया यह दिवस आज दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है।
1: इसका उद्देश्य लोगों को दूध के पोषण मूल्य, डेयरी उद्योग के आर्थिक महत्व और स्वस्थ जीवन में उसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है।
0: साथियों, दूध मानव सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद खाद्य पदार्थों में से एक है। बच्चे के जन्म के बाद उसके जीवन का पहला भोजन भी दूध ही होता है।
1: शायद यही कारण है कि दूध को जीवन, पोषण और विकास का प्रतीक माना जाता है।
0: एक साधारण सा दिखने वाला दूध का गिलास शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और अनेक आवश्यक खनिज प्रदान करता है।
1: ये तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर की वृद्धि में सहायता करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: साथियों, दुग्ध दिवस केवल स्वास्थ्य की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी कहानी कहता है।
1: भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में डेयरी उद्योग लाखों परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत है।
0: साथियों, वर्तमान समय में जब फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, तब संतुलित आहार और पौष्टिक आहार का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है।
1: विश्व दुग्ध दिवस हमें ये याद दिलाता है कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हमारे दैनिक जीवन के भोजन से होती है। दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, पनीर, छाछ और घी भारतीय भोजन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और आज भी पोषण के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं।
0: साथियों, यह दिवस हमें पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। दूध उत्पादन केवल तकनीक या उद्योग का विषय नहीं है, बल्कि पशुओं की उचित देखभाल, उनके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन से भी जुड़ा हुआ है।
1: इसलिए आधुनिक डेयरी व्यवस्था में पशु कल्याण और टिकाऊ विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
0: तो साथियों, स्वस्थ शरीर, सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की दिशा में दूध का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, और रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: साथियों, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में। साथियों, मानव शरीर और धरती दोनों में एक अद्भुत समानता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धरती को भी अच्छी फसल देने के लिए संतुलित पोषण चाहिए।
1: यदि शरीर को केवल एक ही प्रकार का भोजन दिया जाए या खेत में केवल एक ही प्रकार का उर्वरक डाला जाए तो दोनों की सेहत बिगड़ सकती है।
0: दोस्तों, आज बढ़ती जनसंख्या के बीच सबसे बड़ी चुनौती है सभी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इसलिए संतुलित खाद्य के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: संतुलित खाद्य वह होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में मौजूद हो। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, रोगों से बचाते हैं और मानसिक एवं शारीरिक विकास में सहायता करते हैं।
0: साथियों, कृषि में उर्वरकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा।
1: वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी को भी संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल रासायनिक उर्वरक पर निर्भर रहने के बजाय जैविक खाद, कंपोस्ट और गोबर खाद का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
0: साथियों, यह समझना आवश्यक है कि स्वस्थ जीवन और समृद्ध कृषि दोनों की शुरुआत संतुलन से होती है।
1: यदि हमारा भोजन संतुलित होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और यदि उर्वरकों का उपयोग संतुलित होगा तो हमारी धरती आने वाले वर्षों तक उपजाऊ बनी रहेगी।
0: तो साथियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी संतुलन खाद्य एवं उर्वरकों का उपयोग के विषय पर। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आपको सुनवाते हैं वार्ता, जिसका विषय है नदियों की स्वच्छता। वार्ताकार हैं रोहन सिंह यादव।
2: कृषि अर्थव्यवस्था तथा भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि नदियां प्रदूषित होगी तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसीलिए नदियों की स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नदी का महत्व। नदियां प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। मानव जीवन में उनका महत्व अत्यंत व्यापक है। पीने के जल का स्रोत। नदियां करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं। अनेक शहरों की जल आपूर्ति नदियों पर निर्भर करती है। नदियों का कृषि में भी योगदान होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल उपयोग किया जाता है। यदि नदियां ना हो तो खेती करना कठिन हो जाएगा। विद्युत उत्पादन। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, इससे बिजली प्राप्त होती है। उद्योगों में उपयोग। कारखानों तथा उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है, जो मुख्यतः नदियों से प्राप्त होता है। नदियों का धार्मिक महत्व भी माना जाता है। लोग नदियों में स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पर्यावरण संतुलन। नदियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अनेक जीव जंतुओं तथा पौधों का जीवन आधार हैं। नदियों के प्रदूषण का अर्थ। जब नदी के जल में हानिकारक पदार्थ, रसायन, गंदगी, प्लास्टिक तथा अपशिष्ट मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसे नदी प्रदूषण कहते हैं। नदियों के प्रदूषण के कारण औद्योगिक अपशिष्ट। कारखानों से निकलने वाले रसायन सीधे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। इनमें जहरीले पदार्थ होते हैं। इनका प्रभाव जल विषैला हो जाता है, जलीय जीव मर जाते हैं तथा मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। घरेलू गंदगी और सीवेज। शहरों का गंदा पानी तथा सीवेज बिना शुद्ध किए नदियों में बहा दिया जाता है। इसका परिणाम जल दूषित हो जाता है, बदबू फैलती है तथा रोग फैलते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण। लोग प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां तथा कचरा नदियों में फेंक देते हैं। इसका प्रभाव नदी का प्रभाव बाधित करता है, जलीय जीवों को नुकसान होता है। धार्मिक गतिविधियां। पूजा सामग्री, मूर्तियां तथा अन्य धार्मिक वस्तुएं नदियों में विसर्जित की जाती हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है तथा रसायन नदी में मिल जाते हैं। कृषि रसायन। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक खाद वर्षा के पानी के साथ नदियों में पहुंच जाते हैं। मृत पशुओं और कचरे का प्रभाव। कुछ स्थानों पर लोग मृत पशुओं तथा अन्य गंदगी को नदियों में फेंक देते हैं। कपड़े और वाहन धोना। नदियों के किनारे कपड़े तथा वाहन धोने से साबुन और तेल नदी में मिल जाते हैं। नदियों के प्रदूषण के दुष्परिणाम।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषित जल से अनेक रोग फैलते हैं, मुख्य रोग हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया। जलीय जीवों पर प्रभाव। मछलियां तथा अन्य जलीय जीव प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। पीने योग्य जल की कमी। प्रदूषित नदी का जल उपयोग योग्य नहीं रहता। कृषि पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। प्रदूषित पानी से सिंचाई करने पर मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा पर्यावरण असंतुलन रहता है। नदियों का प्रदूषण पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। भारत की प्रमुख नदियां और प्रदूषण। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। करोड़ों लोग इस पर निर्भर हैं, लेकिन औद्योगिक कचरे, सीवेज और धार्मिक गतिविधियों के कारण गंगा प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण का सामना कर रही है। इसी प्रकार साबरमती नदी में भी औद्योगिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है तथा नर्मदा नदी अपेक्षाकृत स्वच्छ मानी जाती है, परंतु शहरीकरण के कारण यहाँ भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों, नदियों की स्वच्छता का महत्व कुछ इस प्रकार है। स्वस्थ जीवन। स्वच्छ नदियाँ लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराती हैं। पर्यावरण संरक्षण। नदियों की स्वच्छता से पर्यावरण संतुलन बना रहता है तथा जलीय जीवन की सुरक्षा। स्वच्छ जल में मछलियाँ तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। कृषि विकास। स्वच्छ जल से खेती की गुणवत्ता बेहतर होती है। आर्थिक विकास। मत्स्य पालन, पर्यटन तथा उद्योगों को लाभ मिलता है। इसी प्रकार नदियों की स्वच्छता के उपाय भी बताए जाते हैं। सीवेज शोधन संयंत्र। शहरों के गंदे पानी को शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण। कारखानों को बिना शुद्ध किए रसायन नदियों में छोड़ने से रोकना चाहिए। प्लास्टिक पर नियंत्रण रखना चाहिए। नदियों में प्लास्टिक फेंकने पर प्रतिबंधित होना चाहिए। जागरूकता अभियान। लोगों को नदी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। वृक्षारोपण। नदी किनारे पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। धार्मिक गतिविधियों में सुधार। पूजा सामग्री तथा मूर्तियों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। कचरा प्रबंधन। घरेलू तथा औद्योगिक कचरे का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसका प्रभाव जैविक खेती में भी देखने को मिलता है। रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। सरकार की भूमिका। सरकार नदियों की स्वच्छता के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। यह योजना गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से चलाई गई है। दूसरी योजना नमामि गंगे प्रोग्राम। इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और संरक्षण है। विद्यार्थियों की भूमिका। विद्यार्थी नदी स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे नदियों में कचरा ना फेंकना, लोगों को जागरूक करना, सफाई अभियान में भाग लेना तथा प्लास्टिक का उपयोग कम करना। नागरिकों की जिम्मेदारी। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह नदियों को स्वच्छ रखने में सहयोग करे। नागरिकों को कचरा नदी में नहीं फेंकना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए। नदी और भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है। लोग नदियों को माता का रूप स्वरूप मानते हैं। गंगा स्नान, कुंभ मेला तथा धार्मिक अनुष्ठान। नदियाँ केवल जल स्रोतों नहीं बल्कि हमारी संस्कृति धरोहर है। नदी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है। इससे नदियों में जल की मात्रा कम हो रही है। दूसरी ओर प्रदूषण नदियों की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। इसमें भविष्य में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। यदि नदियों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल संकट बढ़ेगा, रोग फैलेंगे, जलीय जीवन समाप्त होगा तथा कृषि प्रभावित होगी। नदी स्वच्छता के कुछ लाभ भी देखने को मिलते हैं। शुद्ध पानी मिलेगा, रोग कम होंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसका एक प्रसिद्ध कथन भी है, जल ही जीवन है, स्वच्छ नदी स्वस्थ जीवन, नदी बचाओ भविष्य बचाओ। नदियों की स्वच्छता पर नारे। नदी नहीं होगी स्वच्छ, जीवन होगा कष्ट। गंदगी को दूर भगाओ, नदियों को स्वच्छ बनाओ। नदी बचाओ देश बचाओ। स्वच्छ नदी सुंदर भविष्य तथा जल है अमृत, इससे स्वच्छ रखो।
इसका निष्कर्ष यह है, नदियां मानव जीवन की आधारशिला हैं, वे हमें जल, भोजन, ऊर्जा तथा जीवन प्रदान करती हैं। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण के कारण नदियां संकट में हैं। यदि समय रहते उनकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में गंभीर जल संकट उत्पन्न

0: हो सकता है। नदियों की स्वच्छता बनाए रखना केवल सरकार का कार्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें नदियों में कचरा फेंकने से बचना चाहिए, जल प्रदूषण रोकना चाहिए तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यदि नदी स्वच्छ रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा, नदी बचेगी तभी जीवन बचेगा।
1: अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था नदियों की स्वच्छता। वार्ताकार थे रोहन सिंह यादव।
2: आज था, आज है सोमवार और हम जानते हैं कि हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके का।
1: बिल्कुल।
2: और साथियों आज है अंक 122।
1: और शिवांशु, हमने अंक 122 के लिए अपने दोस्तों से 10 सवाल पूछे थे और ये 10 सवाल हमने पूछे थे पिछले सोमवार को, जिसमें हमारे श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
2: तो आस्था, हमें ईमेल के माध्यम से श्रोताओं के पत्र प्राप्त हुए हैं। तो आस्था, सबसे पहले हम बता देते हैं अंक 122 के प्रश्न और उनके सही उत्तर।
1: बिल्कुल।
2: हमारा पहला प्रश्न था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ?
1: इसका सही उत्तर है ब्रह्मोस।
2: हमारा दूसरा प्रश्न था, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है?
1: इसका सही उत्तर है तमिलनाडु।
2: हमारा तीसरा प्रश्न था, 2025 में आयोजित नॉर्वे शतरंज का खिताब किसने जीता?
1: इसका सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन।
2: हमारा चौथा प्रश्न था, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है?
1: इसका सही उत्तर है क्लोरेला।
2: हमारा पांचवा प्रश्न था, भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया?
1: इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार।
2: हमारा छठवां प्रश्न था, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
1: इसका सही उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में।
2: हमारा सातवां प्रश्न था, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं?
1: इसका सही उत्तर है आठवीं अनुसूची में।
2: हमारा आठवां प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
1: इसका सही उत्तर है पोमोलॉजी।
2: हमारा नौवां प्रश्न था, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था?
1: इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
2: हमारा दसवां और अंतिम प्रश्न था, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था?
1: इसका सही उत्तर है ब्लेस पास्कल।
2: आस्था,
1: हाँ,
2: 10 में से 1 सही से 9 सही तक के हमें एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम उठाते हैं उन श्रोताओं के पत्र जिन्होंने 10 में से 10 सवालों के सही जवाब दिए हैं और वो हमारे विजेता बनने की सूची में हैं। हमारे वो श्रोता हैं,
1: दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन एले और नवदीप एले।
2: अगला पत्र मिला है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर नयन और सोमांशु पांडे का।
2: अगला पत्र मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
2: अगला पत्र मिला है ग्राम गुढ़ाराज से पेंटर मनोज साहू, चित्रेखा, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है दतरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का।
2: अगला पत्र मिला है कोयलारी छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद्र पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
2: अगला पत्र मिला है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से वलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, मुरली और खूबचंद वर्मा का।
2: अगला पत्र मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रिम्बिका, लीना और आशुतोष अंगारे का।
2: अगला पत्र मिला है पतरिया बहरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोवेश, नेहा, बान्या, सिंगरौल का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है पीपर पारा छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योग्यता, नितिन और वंशिका दिवाकर का।
2: अगला पत्र मिला है परसा टूला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, तुषारणी और खूमेंद्र मसीहा का।
1: और अगला पत्र और ये अंतिम पत्र है जो हमें प्राप्त हुआ है बोटसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी और विभूति साहू का। तो शिवांशु 10 में से 10

0: सही जवाब वाले पत्रों की संख्या है 17, और हमने इन 17 नामों की बनाई हैं पर्चियां। तो अब आप इनमें से किसी एक पर्ची को उठाइए और आज के सवाल हमारे जवाब आपके अंक 122 के विजेता का नाम घोषित करिए।
1: बिल्कुल आस्था, और ये नाम निकल कर आता है दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन एली का। गजानन एली जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सवाल हमारे जवाब आपके अंक 122 के विजेता बने।
0: और शिवांशु, जैसा कि हमारे दोस्तों को मालूम भी है कि हम विजेता को उपहार के रूप में सुनवाते हैं विजेता की पसंद का गीत, तो हमारे जो विजेता श्रोता हैं, उन्होंने जो गीत पसंद किया है वह फिल्म बिन फेरे हम तेरे से, जिसमें आवाज है किशोर कुमार की।
1: गीतकार हैं इंदिवर और संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। तो दोस्तों, सुनते हैं विजेता श्रोता की पसंद का एक गीत, लेकिन हम आपको बताएंगे सवाल हमारे जवाब आपके अंक 123 के प्रश्न। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा।

0: उम्मीद है कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम बता देते हैं आपको सवाल, हमारे जवाब आपके अंक 123 के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
1: हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य ने शुरू की है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया।
1: हमारा चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है।
0: हमारा पांचवा प्रश्न है, बीएम फ्रेम्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
1: हमारा छठवां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है।
0: हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में होलोसीन युग के जीवाश्मों का एक भंडार खोजा गया है।
1: हमारा आठवां प्रश्न है, किस टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता है।
0: हमारा नौवां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला राज्य कौन सा है।
1: हमारा दसवां और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है।
0: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 123 युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001।
1: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchhatarpur@gmail.com।
0: इसके लिए हमें आपके पत्र 8 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो साथियों, ये तो था आज का हमारा सवाल हमारे जवाब आपके कार्यक्रम, और आज था, अब हम अपने दोस्तों को बता देते हैं आज की रोजगार सूचना।
1: बिल्कुल शिवांशु,
0: BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम अप्रेंटाइज,
0: पदों की संख्या 5000,
1: आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष, आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी,
0: आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026,
1: शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbadoda.bank.in पर विजिट करें। तो साथियों, ये तो थी आज की रोजगार सूचना, और आज था, क्यों ना हम अपने दोस्तों का मनोरंजन करा दें इस प्यारे से।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ए जवानी है दीवानी फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी श्रीराम और शिल्पा राव की।
1: इसमें गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
0: तो आस्था, अब समय हो चला है अपने दोस्तों से अनुमति लेने का। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले बता देते हैं आपको कल की कार्यक्रम। कल आप सुनेंगे
1: कल आप सुनेंगे वार्ता, जिसका विषय होगा बुंदेलखंड का इतिहास। वार्ताकार होंगे ऋषभ बिमौर।
0: साथ ही होगी महत्वपूर्ण चर्चाएं और होगी रोजगार सूचना और आपके मनोरंजन के लिए होंगे कुछ मधुर गीत। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए अपने दोस्त शिवांशु प्रजापति।
1: और आस्था द्विवेदी को नमस्कार।
0: नमस्कार।

युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में शाहरुख बोला खूबसूरत है तू फिल्म का गीत। गीत लिखा था वसुधा शर्मा ने, संगीत भी दिया था वसुधा शर्मा ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अब आपको सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में रक्त चरित्र फिल्म का गीत। शब्द रचना है संदीप सिंह की और संगीत दिया है सुखविंदर सिंह ने।

0: Monster didn't die!
1: अभी आपने सुना रक्त चरित्र फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में। संदीप सिंह का लिखा गीत था और संगीतबद्ध किया था सुखविंदर सिंह ने। अब आपको सुनवाते हैं मूसा फिल्म का गीत कुणाल गांजेवाला और श्रेया घोषाल की आवाज में। बाबुल का लिखा गीत है, संगीत है इलियास का।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से ही कुछ देर बाद यानी कि शाम 6 बजे भोपाल के एनसीआर में प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा के कलाकार होंगे मुन्ना लाल खरे और साथ ही 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतूला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुने भेंटवार्ता मछली पालन कैसे करें विषय पर बीरन रेखवार से स्वप्निल अग्रवाल की बातचीत और आज के सीख का विषय होगा जी के कुल की जौन है

गए रहते हैं टोन सिंह बांध के चेनुआ इन्हें सिखावत कौन। 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रेले करेंगे सुर्खियों में। फिल्म संगीत सुनेगा 8:15 पर दिल्ली के इंसान प्रसाद करेंगे। 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये तो थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल सुबह 5:55 पर वंदे मातरम, 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 6:30 पर कार्यक्रम विवरण, 6:35 पर खेती किसानी विषय होगा गोबर गैस संयंत्र से लाभ, 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान, 6:50 पर चिंतन, 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे बुंदेली वार्ता। बुंदेली कवि गंगाधर व्यास, वार्ताकार होंगे पंडित बाबूलाल द्विवेदी। फिल्म संगीत सुनेगा 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात्रि 8:15 पर। सुबह 8:30 पर आपको सुनवाएंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी।

नमस्कार। 6:50 पर चिंतन, 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे बुंदेली वार्ता। बुंदेली कवि गंगाधर व्यास, वार्ताकार होंगे पंडित बाबूलाल द्विवेदी। फिल्म संगीत सुनेगा 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात्रि 8:15 पर। सुबह 8:30 पर आपको सुनवाएंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, राकेश कुमार सोनी, बलराम सोनी और भूमि प्रकाश पाठक। 9:30 पर एक ही गीतकार कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे विशाल ददलानी के लिखे हुए कुछ गीत। 10:05 पर आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। इसमें सुनेंगे वार्ता बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम, वार्ताकार होंगे मुनिंद्र सिंह राजपूत। 10:35 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें महिलाएं सुने मंजूषा कनानी का काव्य पाठ और साथी सुने व्यंजन विधि में नमकीन चीला। लीजिए सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 पर आपकी फरमाइश, शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी और रात्रि 8 बजे सुर्खियों में। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। कल हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे वाणी में युवा साथी सुनेंगे वार्ता बुंदेलखंड का इतिहास, वार्ताकार होंगे ऋषभ मोर, साथी सुने रोजगार सूचना। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम, लोकधारा के कलाकार होंगे राकेश कुमार। 7:20 पर घंटी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें ग्रामीण महिलाएं सुने श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथी सुने भेंट वार्ता रासायनिक उर्वरक एवं खाद का संतुलित उपयोग विषय पर डॉक्टर बीरेंद्र कुमार पटेल से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत। और आज की सीख का विषय होगा जय ही विधि राखित राम तेही विधि रहिए।

कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं इस घंटे की खास खबरें। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रदेश लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय सदानीरा समागम में आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।

उनके साथ मंच पर साइप्रस, फिजी और मैक्सिको दूतावास से अतिथि भी मौजूद रहेंगे। और राजधानी भोपाल में मौसम सुहाना हो गया है, यहाँ तेज हवाओं के साथ बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने आज झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
0: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
0: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044545

शिक्षा की। क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है।

0: साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
0: अब ये विद्यालयों में हमारे कक्षा कक्ष में

0: करते हैं, ठीक है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहाँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांग जन, विकलांग जनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहाँ हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालय

0: विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध

0: कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में मौखिक भाषा में बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी
0: ठीक है लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां उत्तरी भारत में
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ

0: रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए।
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी।
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी।
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
1: जी।
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है।
1: जी।
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी।
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी।
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं। बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की

0: रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूर

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानी आए
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार,
3: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज के कलाकार हैं मुन्ना लाल खरे और साथी, इनसे सुनते हैं विवाह पर केंद्रित लोकगीत। संगीत करने वाले कलाकार हैं हारमोनियम पर बीरबल रेखवार, बेंजो पर हरप्रसाद रेखवार, ढोलक पर हैं कीरत, झीका पर हैं बलराम पटेल और मजीरा पर हैं रामस्वरूप राजपूत।

0: अभी आपने सुना मुनालाल खरे से विवाह पर केंद्रित लोकगीत।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: 90.
1: अब आपको सुनवाते हैं विदाई पर केंद्रित लोकगीत मुन्ना लाल खरे और साथियों की आवाज में।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: আকাশবাণী এট 90।
1: बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा में आज आप सुन रहे हैं मुन्ना लाल खरे और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। संगीत करने वाले कलाकार हैं मजीरा पर रामस्वरूप राजपूत, ढोलक पर कीरत, बैंजो पर हरप्रसाद रेखवार, झीका पर हैं बलराम पटेल और हारमोनियम पर हैं बीरभर रेखवार।

लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए शिव विवाह पर केंद्रित लोकगीत। मुन्ना लाल खरे और साथियों की आवाज में संगीत करने वाले कलाकार हैं मजीरा पर रामस्वरूप राजपूत, ढोलक पर कीरत, बैंजो पर हैं हरप्रसाद रैखवार, झीका पर बलराम पटेल और हारमोनियम पर हैं बीरबर रैखवार।

इसी के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा समाप्त होता है। आज के कलाकार थे मुन्ना लाल खरे और साथ ही संगीत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर बीरवर रैकवार, बेंजो पर हरप्रसाद रैकवार, ढोलक पर थे कीरत, झीका पर बलराम पटेल और मंजीरा पर थे रामस्वरूप राजपूत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए गुमशुदा सूचना। गुमशुदा का नाम है लाखन सिंह, पुत्र स्वर्गीय टीकाराम, निवास ग्राम मगराया, पोस्ट कुकरगांव, उरई तहसील, उरई थाना कोतवाली, उरई जिला जालौन से 22 मार्च 2026 से लापता हैं। उम्र है 20 वर्ष, रंग गोरा, लंबा चेहरा, लंबाई है करीब 5 फुट 2 इंच, आंख कान नाक गोल है। जिस किसी सज्जन व्यक्ति को कोई जानकारी मिले तो इन नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें। मोबाइल नंबर है 9792943581, यानी कि 9792943581। एक और मोबाइल नंबर है 9454400279, यानी कि 9454400279। एक और मोबाइल नंबर लिखें 9454401427, यानी कि 9454401427। एक और मोबाइल नंबर लिखें 9454403599, यानी कि 9454403599। एक और गुमशुदा सूचना सुने। गुमशुदा का नाम है मोहम्मद अनीस, पिता का नाम है मोहम्मद नबी, निवास मोहल्ला मैथिली शरण, माधोगढ़ जालौन उत्तर प्रदेश से 19 अप्रैल 2026 से लापता है। उम्र है 37 वर्ष, हुलिया है रंग गोरा, लंबाई है 5 फुट 3 इंच, पहनावा है क्रीम कलर का पैंट और फिरोजी शर्ट पहने हुए हैं। जिस किसी सज्जन व्यक्ति को कोई जानकारी प्राप्त हो तो इन नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें। मोबाइल नंबर है 7355248193, यानी कि 7355248193। दूसरा मोबाइल नंबर है 9838910353, यानी कि 9838910353। एक और मोबाइल नंबर लिखें 9410405556, यानी कि 9410405556। एक और मोबाइल नंबर लिखें 9454403601, यानी कि 9454403601। एक और मोबाइल नंबर लिखें 9454401430, यानी कि 9454401430। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने

0: खाया इटालियन कुजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए। तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश और मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के रमासिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
1: मेरे किसान भाइयों, आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है।
0: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और नौ निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में आज उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
2: हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में, अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके। और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश में लागू हो जाए। मध्यप्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज

0: कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक ओसिया मध्यप्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की प्रमोशन के बाद उन्हें स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक ओसिया जबलपुर के रहने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प, उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। और अब खबर मौसम की। नौतपा के 8वें दिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम में अचानक बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट आई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। आगरमालवा जिले में आज दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। पन्ना में कल अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना में आंधी और गरज चमक के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ के रामा में कल विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जनसामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर आदित्य गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनबे वाले सभी भैया बहनन खा बिरजू भैया की राम राम। देखो भैया संजय बिरिया भाई और हम अपन सबके बीच में आ गए। भैया बहन हरो, जब तक अथाई के चबूतरा पे दो दो बातें मन मन की ना हो जाए तब तक मन का शांति नहीं मिला। और बात भी भैया सही है, ये सब होत काय के अपने मन में जो समस्या होत है भाई एक दूसरे से कहवे से वो समस्या को हल मिल जात है। और दूसरी बात भैया जो कि आपसी प्रेम भाव बढ़त है। भैया हरो देखो, आज है 1 जून और आज के दिन हम अपन सब अभिभावक दिवस मनाऊत हैं। ई दिवस मनावे को जो उद्देश्य है कि बाल गोपालन के पालन पोषण में माता पिता के निस्वार्थ योगदान और बलिदान का सम्मान देवो है। जो दिन परिवार का मजबूत बनावे और बच्चन का नैतिक विकास और अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका पे जोर देत है। और भैया बहन हरो, आज के दिन हम अपन सब विश्व दुग्ध दिवस मनाऊत हैं। ये 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित करो गयो हतो। इको उद्देश्य वैश्विक आहार के रूप में दूध के महत्व का पोषण, डेयरी उद्योग के आर्थिक पर्यावरणीय योगदान पे जोर दौ गयो हतो। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, सतत विकास और अच्छे स्वास्थ्य, कैल्शियम और प्रोटीन को बेहतरीन स्रोत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊत है। भारत विश्व को सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भैया बहनों, हम अपन से भी आगे भी चर्चा कर भी उके पहला थोड़ा सा रोकत हैं।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: भैया बहन हरो, अपन सब देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में दिन पे दिन तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में अपन सबका लू लपट से जरूर बचाव करने हैं। ई खिलाने अपन सबका दोपहरी में बाहर जावे से बचने हैं। अगर जरूरी होए तो सिर पे और कानन में तौलिया बांध के जाने हैं और पेट में कछु खाना खा के जाने हैं। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं करने हैं और पानी पर्याप्त मात्रा में अपन का पियत रहने हैं और देसी जैसे मठा को सेवन करने हैं, सलाद में प्याज नींबू को उपयोग करने हैं और आम को पना बना के जरूर पीने हैं, जिसे शरीर के अंदर ठंडक बनी रहे और जिसे अपन सब जने लू से बचे रहे। तो हमारे सब भैया बहन से तो जो कहबो है कि अपन का अपनों तो ख्याल रखनी है, संगे संगे जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं उन्हें भी बाहर जावे से मना करने हैं। कैसे भैया देखो, अभी खेल के चक्कर में बाहर घूमत रात खेलत रात तो उन्हें लू लपट लग सकत है। तो अपन का अपनों बचाव करने हैं, अपने बच्चन को बचाव करने। और भैया बहन देखो, अपन सब जन खेती किसानी से तो जुड़े ही हैं, लेकिन खेती के संगे संगे अपने कछु भैया बहन मछली पालन शुरू करते हैं। तो जब बात मछली पालन की चली है तो आज हम अपने सभी भैया बहनन का सुनवा रहे हैं जब भेंट वार्ता, मछली पालन कैसे करें और सिंघाड़े की खेती कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बीरेन रेकवाडजू और बतकाव कर हुए स्वप्निल अग्रवाल ने। तो सुने सभी जने
4: पंचो, आज अपने बीच में पधारे हैं वीरेन रेकवाडजू। अपन एक प्रगतिशील कृषक हैं और खेती किसानी के संगे संगे अपन और ने देखो हुई है कि भैया तला में जो मछलियां पाली जाती हैं, तलन से जोन जोन है सिंघाड़े अपन और खा मिलत है, उपवास व्रत

0: बिहार में जो अपन सिंघाड़े की खेती करते हैं उके बारे में आज एक बड़ी उपयुक्त और नोनी जानकारी अपने पंचन के बीच में लेके आए हैं वीरन रेकवारजू ग्राम भगवा से और जिला छतरपुर के अंदर ग्राम भगवा जो आउट है। तो वीरन जू राम राम।
1: राम राम आप सभी।
0: वीरन जू अपने पंचन का अपन बताओ के अपन जो मछली की खेती करत है सिंघाड़न की खेती करत है तो क्या कैसी करी जात है
1: मछलिया की खेती के लाने। तो ऐसो है कि मछलिया की खेती तो जून के महीना से 15 जून से बरसात चालू होते जब ऐसे अपन तैयारी कर देते हैं कि मछलिया को छोटे छोटे बच्चा और पानी में अपन देख देख कर काई तो नहीं है ज्यादा उमे गंदो पानी तो नहीं है उसकी सफाई देख कर कोई अन्यथा कोई ऐसे पेड़ पौधा नहीं है उमे बाकी अपन जून के महीना में उन्हें बच्चा डाल वो चालू कर देते हैं और उनकी देख रेख के लाने उसमें थोड़ी खरी भी डाली जाते जाल घुमाओ जाते नेट चलाओ जाते ताकि वो बच्चा पोषण में लेते रहे।
0: तो वीरन जू अपने पंचन का जो बताओ जाए कि जो जी मछरिया के बीज हैं जो जी छोटे छोटे बच्चा है जी अपन का कहाँ से प्राप्त होते हैं।
1: वैसे तो कछु शासन द्वारा भी हमें ऐसी सब्सिडी मिलत है कि जैसे कि अपने ही खजुराहो में एक हैचरी खोल रखी है बहुत बड़ी हर समिति या छोटी सी मात्रा लेकर रसीद काट कर लाखन बच्चा प्रोवाइड कराओ जाते है लेकिन ज्यादातर ऐसा होते कि अपने जैसे बड़ी मछली अपने तालाब में रह जाते उनकी भी ब्रीडिंग हो जाते है बाकी कछु हमोरे अपनी बड़ी मछली अलग से एक जाल नेट लगाकर उनमें पालत है फिर उसके बाद उनको अंडा होता अंडा से उनमें ब्रीडिंग हो ब्रीडिंग को हम ख्याल करने के बाद वही बच्चा अपना थोड़ा बड़ा हो जाए पहले स्पान क्षेत्र में हो फिर थोड़ा बड़ा हो जाते फिर अपने बड़े तालाब में डालकर उनको पालन पोषण करें।
0: तो एक चीज और अपने पंचन खा रंजू बताओ कि मछली की खेती के संगे जो अपन ने बताओ है कि अपन सिंघाड़ी की भी खेती करते हैं तो क्या जब मछली की पालन जो है मछली की सिंघाड़ी की खेती है या एक संगे हो जाते हैं कि दो ही अलग अलग होती है।
1: जैसे कि आपका हमने बताओ तो अभी कि जून के महीना से मछली पालन चालू कर देते हैं ऐसे ही अप्रैल के महीना में अक्ती को एक त्योहार आउट है अक्ती के त्योहार के वाले दिन पानी कम रहा था तालाब में तो हम लोग पहली गूंज जो मतलब पौधा होते उनको सिंघाड़े की खेती को वो अपन अक्ती के दिन गाड़ देते हैं उमे अक्ती से लेकर और आज बराबर सात तक बढ़िया उसकी फसल लगाउत रहते हैं हमारे सावन के महीना के बाद फिर उसकी नई पैदावार नई पौधा नहीं लगाऊ थे तो फरक तो रात है जून में जो होते और अपन अप्रैल से जो चालू कर देते तो एक 8 महीना की खेती रात है
0: मतलब एक तला के में जो है अपनी दो ही प्रकार की खेती हो जाती है मछलियां भी पल जाती हैं और सिंघाड़न की खेती
1: हाँ दो ही प्रकार की खेती हो जाती है हमारी फर्क सिर्फ इतो रात के जो कछु मछलियां ऐसी प्रजाति की होती है कि बे अपन तालाब में नहीं छोड़ा जो अपन सिंघाड़े की खेती कर जैसे कि गिलास एक मछली का नाम है गिलास काट मछली होती है अगर अपन बसंगे छोड़ रहे हैं तो बा सिंघाड़ी का नुकसान कर दे पेड़ खा ले तू।
0: अब सबसे जो जरूरी बात है अपने पंचन खा जानवी के लाने कि इन खेतियों के लाने जो अपन और ने बताओ है कि तला की जरूरत पड़त है तो जे तला जो है जे सरकारी रात है कि अपने खुद के तला रात है या कोनू छोटी पोखरिया में अपन और खा इनकी खेती अपन कर सकते हैं इनकी का कैसी व्यवस्था अपन और जमा होना पड़ा है।
1: वैसे तो पूर्व जमाने से हर गांव में चंदेली राज के तालाब है जो शासन के रात थे लेकिन रेकवार समाज का प्राथमिकता दई शासन ने उनके नाम एक समिति रजिस्ट्रेशन होते समिति के बाद उमेको को पट्टा बनाओ जाते है 10 साल के लाने पट्टा दे रहा जाते है समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव द्वारा एक टीम बनाई जाते है 10 साल तक भी करते हैं बाकी शासन की अभी एक योजना और चल रही है खेत तालाब निकल रहे हैं तो जो छोटे व्यवसाय वाले लोग होते हैं जैसे कि अब समिति में 30 लोग जुड़े हैं अब उनका परिवार बड़ा हो गया है लड़के 4 हो गए हैं तो उनके लिए शासन ने खेत तालाब की योजना निकाली है कि तुम्हारा कोई बंजर वाला खेत पड़ा है तो उसमें आप 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक खेत तालाब करवा कर उसमें भी अपनी सिंघाड़ी और मछली का खेती कर सकते हैं।
0: तो इके लाने अपन का जैसे अपन और ने बताओ कि शासन से पट्टा लेने पड़े थे समिति पट्टा ली थे और मतलब तो जो कहानों के आसपास अपने और उनके जितने भी जो तालाब हैं इन सब तालाबन के पट्टा हो सका थे खेती के लाने और मछली पालन के लाने।
1: बिल्कुल बिल्कुल जितने भी तालाब कहीं भी जल क्षेत्र अगर पड़ा है और वो शासन का या मध्य प्रदेश शासन में भी है तो अपन लोग उसको सहकारिता विभाग में मत्स्य पालन में आवेदन देकर अपन उनको भी पट्टा लेकर अपन उनमें खेतीबाड़ी कर सकते हैं अपनी मछली और सिंघाड़े की दुई
0: के। तो मतलब समिति के जितने सदस्य होते हैं उन सबको अधिकार ऊपर जितनी भी उपज होते हैं उनपे सबको बराबर को अधिकार होते हैं या फिर उनका बाजार में बेचवे के लाने अलग से अपन और उनका उनको उचित मूल्य मिला थे।
1: नहीं नहीं जितने समिति के सदस्य जुड़ जाते हैं सदस्य सब अपने हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे 15 हेक्टेयर का खेत है हमारा तालाब है जितने समिति के सदस्य होते हैं सभी लोग अपन मिलके क्षेत्र बाई क्षेत्र बांट लेते कि इतना एरिया तो मैं मिला इतना एरिया होता अपनी अपनी सिंघाड़े की खेती उसमें करते मछली इकट्ठी होते सब।
0: अच्छा मछली इकट्ठी होकर तुरंत कहानी और सिंघाड़े की खेती अपनी अपनी जगह
1: अपनी अपनी कर ले
0: अपनी अपनी फसल में। अच्छा इमे भी का शासन से कोनू छूट दी जाते अपन औरन का

0: सिंघाड़े की खेती में कोनो छूट नहीं है। बाकी मछली पालन में काफी सारी सब्सिडी मिलती है, सरकारी बच्चा भी कभी कभी हमें प्रोवाइड कराओ जाते हैं मत्स्य पालन द्वारा, तो बच्चा भी मिल जाते हैं हमें, सब्सिडी मिल जाते हैं।
1: अब जैसे अपन हो रहे देखो है कि जो ना खेतन में अपनी फसलें खड़ी रहती हैं, उनमें अपन हो रहे दवाई डाल रहे थे, खाद पानी बीज लगाऊ थे, तो का मछली पालन में और सिंघाड़ी की खेती में भी प्रकार की कोनो रोग राई लगत है, उनको दवा को छिड़काव करो चाहिए या कोनो पोषक तत्व उनका अपन की दे जाते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अगर मई को महीना चल रहा है, मई के महीना में तापमान ज्यादा है, पानी गर्म हो रहा है, कुछ छोटी मछली होती है, कुछ बड़ी मछली होती है, उनमें अनेक प्रकार के रोग आते हैं, तो हमें उनकी दवाई करनी पड़ती है। मछली से ज्यादा हमें सिंघाड़े की खेती में दवाई करने पड़ती है।
1: अच्छा, मतलब उनमें दवाई भी डाली जाती है?
0: दवाई बहुत अधिकतर,
1: तो इका मतलब ये को छिड़काव करो जाते हैं कि जब पानी में घोल के डाली जाते हैं, कैसे कराते हैं?
0: पहले तो ऐसा रात तो कि हम राख डाल के बारह का हाउ तो एक खजरी को बारह, सो बारह से ही उनके कीड़ा होते कोनो कीटाणु जो उनपे पत्ता खाते हैं उनके, सो उसे मार देते। अब ऐसी कीटनाशक दवाई बन गई है कि अपन टंकी में रखते उनको छिड़काव कराते हैं तो वो अपनी फसल अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण बात बीरेन भैया अपने पंचन खा अपन बताओ कि जो अपन का खेती करते हैं इसे अपन का लाभ कितना?
0: सिंघाड़े की खेती में लाभ ऐसा है कि जितनी मेहनत उतना लाभ।
1: अच्छा,
0: मेहनत के लाने हम आपको बताएं कि अगर हम सिंघाड़ी अक्टूबर नवंबर से तोड़ बो चालू कर दे तो एक पहलो सिंघाड़ो निकला अपना नौनीछा, यानी जो नखून से छील के खाओ जाते हैं,
1: छील के खाओ जाते
0: हैं, उमे अपनो डंठल और पानी संगे बिक जाए, उमे तन दो पैसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। वही चीज अपन अगर दिसंबर में बेचे थे, सुबह तोड़ के अपन उबेल के और काट के बाजार में बेचे थे, उसमें तनक पैसा और अच्छा हो जाता
1: है।
0: अगर अपने पास समय नहीं बचू सो अपन में कहा है कि लास्ट में पूरे सुखा के उनकी कोड़ी निकाल के अपन कोड़ी इकट्ठी गए,
1: मतलब कहानों के उपवास में जो अपन सिंघाड़े को आटा खाते वही कोड़ियन
0: कोड़ियन को निकल रहे थे,
1: मतलब दाम के दाम और कोड़ियन के भी दाम,
0: कोड़ियन के भी दाम।
1: भैया बीरेन भैया अपन आज अपनी छतरपुर आकाशवाणी में आए, अपने पंचन खा सिंघाड़ी और मछली पालन के बारे में इतनी उम्दा और नोनी जानकारी दी, ई के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों देखो, अब अपन सबने मछली पालन और सिंघाड़े की खेती कैसे करें ई विषय पे जानकारी सुनी बीरेन रिकॉर्ड से, और अब हम कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं उके पहला थोड़ा सा रुकत है।
3: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
4: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: भैया बहन अरे देखो, आज सोमवार है और आज के दिन हम सभी भैया बहन का रमतूला कार्यक्रम सुनवाऊ थे, तो वे निश्चित बात हेरे हुई है, तो अपने सभी भैया बहन हर सुने रमतूला कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की, सुने सभी भैया बहन। रमतूला कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनन खां अपने भैया पुष्पेंद्र कुमार वर्मा की राम राम। देखो भैया, अपने ही रमतूला कार्यक्रम की वेरा भाई और हम अपन सबको मन पसंदीदा कार्यक्रम रमतूला लेके हाजिर हो गए। ई कार्यक्रम को प्रसारण प्रत्येक सोमवार खां ग्राम सभा में अपन सब जन सुन सकत है। ई के लाने अपन खां जो फोन कॉल्स लगाने हैं वे प्रत्येक सोमवार खां दिन में 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक अपन सब जने फोन लगा सकत हैं। इकेला ने हमारे जो फोन नंबर हैं वे हैं 241588 और 200 नंबर है 2980 29। छतरपुर से बाहर के भैया हमारे एसटीडी कोड नंबर लगाबू न भूलें, छतरपुर को एसटीडी कोड नंबर है 076782। और भैया देखो, जे बजन लगे अपन सब जन की फोन तो हम अपन सबका सुनवा रहे हैं गाड़ी जिये गा रही है सविता यादव। ई गाड़ी है सुनबे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
5: चंदमान नाम दे बोल रहे ग्रामपुर देवी जिला छतरपुर से सर, सविता यादव पहले नंबर को लोग भी सुना दीजिए सर।
6: हम मंजू नाम दे बोल रहे देवी रोड से, सविता यादव की आवाज में सुनवा देना सर।
7: हम परशुराम पाठक बोल रहे पाठक मोहल्ला, हमें वर्मा जी पहले नंबर को लोग भी सुनना है सविता यादव की गाँव।
8: जय मां हिंगलाज रेडियो श्रोता ग्राम ममना सरेला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी। आज पहले नंबर का सुनवा देना सविता यादव जी की आवाज में गाड़ी।
9: सर मैं जिला शिवपुरी तहसील पिछोड़ ग्राम चिन्नौज दीपक विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी। सविता यादव जी की आवाज में लोग की सुनवा दियो।
10: नाम कटवा रहे थे, नाम दे बोल रहे सविता यादव। हम
11: फूलचंद पाल बोल रहे मनकारी, सविता यादव जी की आवाज में लोग भी सुनना है।
12: हम बोले मोहाल जंतपुरा पनवारी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदी नहरवार बात कर रहे हैं सर जी। हाँ सुनवा दो तुम, पहले नंबर का है सविता यादव जी की आवाज में गाड़ी है वो सुनवा दो आप।
2: इकिला ने

अच्छी ईमेल और चिट्ठियां सोई आई हैं। जब चिट्ठी आई है ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिखने वाले भैया बहने राजा राम अहरवार, राधेलाल अहरवार, प्रवीण अहरवार, श्रीमती शारदा, कुमारी दीपा, सीमा, निशु और राखी अहरवार। तो भैया बहनों अपन सब जन सुनो जय गारी जी, ये गारी है सविता यादव।

0: भैया बहनों, अबे अपन सबने सुनी गाड़ी जीए गा रही थी सविता यादव, और अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं एक और गाड़ी जीए गा रहे हैं राजू पटेल और साथी। ये गाड़ी है सुनबे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
1: सर हम ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं। सर जी आज हमको सुनवा दीजिए राजू पटेल का दूसरे नंबर का लोग भी सुनवा दीजिए।
2: ग्रामपुर जिला छतरपुर से नीति पटेल बोल रहे हैं सर। राजू पटेल की आवाज में दूसरे नंबर का लोग गीत सुनना है सर जी।
3: जी सर, जगत सिंह करार ग्राम पटलिया बराई तहसील बेगमंज जिला रायसेन। राजू पटेल की आवाज में दूसरे नंबर का लोग गीत सुनना सर।
2: गोना कुमार सचान नाम दे बोल रहा है। राजू पटेल की आवाज में लोग भी सुन रहे।
4: सर मैं यशवंत चढ़ार बोल रहा है सर पिपलिया से। सर राजू पटेल की आवाज में सुनने हैं दूसरे नंबर को।
5: जी ग्राम बापू खितीपुर ग्राम पंचायत खितीपुर तहसील करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आपका नाम श्रोता मित्र श्रीराम सिंह रजक। सर जी राजू पटेल साथी की आवाज में सुनवा दे श्रीमान दूसरे नंबर का लोग भी।
6: हम डेयरी रोड से बोल रहे हैं कृष्णाम देव। राजू पटेल की आवाज में लोग भी सुनना है।
7: सर जी हम बोल रहे हैं महुआ मोहल्ला हवेली दरवाजा से छुपटू साहू। सर जी आज हमें लोग सुनना राजू पटेल की आवाज में गाड़ी।
8: जी मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महुआ उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा बात कर रही हूँ सर। आज हमें सुनवा दी हूँ राजू पटेल और साथी इनकी आवाज में एक गीत दे सुनवा दी हूँ।
9: मैं सुरंत पाल सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ ग्राम बाबूपुरा तहसील जिला जालौन।

0: कौन से? दूसरा नंबर का लोकगीत सुनना है।
1: ई के लाने कछु ईमेल और चिट्ठियां सुन आई है।
2: भैया जो चिट्ठी आई है ग्राम पोस्ट खन्ना जिला महुआ उत्तर प्रदेश से लिखने वाले भैया वैन है ओम प्रकाश नामदेव, श्रीमती पुष्पा नामदेव, कुमारी मेघा, घटा रंभा, परी, भूमि नामदेव, श्रीमती वर्षा, शिल्पा, अलका नामदेव और इतनी से भैया हैं ज्ञानेश गुप्ता, ध्यानेश गुप्ता और रामलखन गुप्ता।
1: तो भैया बहनों अपन सब जने सुनो जा गारी, जिये गा रहे हैं राजू पटेल और साथी।

0: भैया बहनों, अभी अपन सबने सुनी गारी, जी ये गा रहे थे राजू पटेल और साथी, और अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं चौकड़िया, जी ये गा रही है भानुभक्ति रेखवार। ई चौकड़िया यहाँ सुनबे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल।
1: जिला सागर तहसील वंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं चरण सिंह। भानुभक्ति रेखवार को सुना दिए सर।
2: हम ग्राम पोस्ट गोना कुठमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से आपका अपना नियमित छोटा कैलाश नारायण नाम जी बोल रहे। जी सर, हमको भानुभक्ति रेखवार के समय एक चौकड़िया लोग बीच है वो सुनना है।
3: अशोक कमल नामदेव ग्राम पुष्ट पापेट तहसील सागर जिला सागर से बोले सर जी। सर जी भानुभक्ति रेखवार को सुनवा दीजिए।
4: ग्राम चितैया थाना श्रीनगर तहसील जिला महोबा उत्तर प्रदेश से प्रमोद पार बोल रहा हूँ जी सर। हमको सुनना है भानुभक्ति रेखवार के स्वर में सुना दिया जाए लोग भी।
5: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं छत्तीसगढ़ से, भानुभक्ति रेखवार जी की आवाज में लोकगीत सुनवा दीजिए।
6: हम ग्राम काला पानी जिला छतरपुर से कीर्ति पटेल बोल रहे हैं। हमें तीसरे नंबर का भानुभक्ति रेखवार का लोकगीत सुनना है।
7: मैं तो बोल रहा हूँ कौच जिला जालन द्रावटी से, मुझे तीसरे नंबर का लोकगीत सुनना है भानुभक्ति रेखवार की आवाज में।
8: ग्राम पनवाड़ी जिला महो

0: गाड़ी जिये गा रहे हैं बालमुकुंद कड़ा। ई हादसे गाड़ी है सुनबे के लाने आए भी कछु फोन कॉल्स।
1: जी मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में तो दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं वर्मा जी। आज हमको चौथे दिन पर एक गाड़ी है बालमुकुंद कड़ाजू की आवाज में गाड़ी सुनना है।
2: बालमुकुंद कड़ा को लुगी सुनने
3: वर्मा जी, हम श्री राम रेडियो सोता संघ बहुमरी कलां जिला टीकमगढ़ से पाठक बोल रहे। आज अपन सुनवा दो चौथे नंबर पे है बालमुकुंद कड़ा की, उन्हीं की आवाज में सुनना चाहूँ।
4: ग्राम चिन्नौरी तहसील पिछोर जिला सीपी से आपका नियमित श्रोता सालक राम विश्वकर्मा बोल रहा हूँ वर्मा जी। आज बालमुकुंद कड़ा जी को गाँव लोग सुनवा दीजिए सर चौथे नंबर को।
5: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से, और आज हमको सर चार नंबर का गीत सुनवा दीजिएगा बालमुकुंद कड़ा जी का है।
0: ई के लाने कछु ईमेल और चिट्ठियां सुनी आई है। जो चिट्ठी आई है ग्राम अमलेश्वर से लिखवे वाले भैया बहन है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। तो भैया बहनों अपन सब जन सुनो जहाज से गाड़ी जिये गा रहे हैं बालमुकुंद कड़ा।

थे बालमुकुंद कड़ा। और भैया बहनों अब हम अपन सबका बता दे अगले रमतूला कार्यक्रम की झलकियाँ। कार्यक्रम की पहली झलकी है दादरा से, जिए गा रहे हैं ब्रजनंदन भोंडेले और साथी।

और भैया बहनों यही के संगे आज को हमारा तुला कार्यक्रम पूरा भाव। भैया बहनों देखो अब अपन सबने सुनो रमतुला कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और भैया बारी आउ थे आज की सीख की। आज हम बात कर भी जी के कुल की जौन है लय रहत है तौन सिंहवाद के चैनुआ इन्हें सिखावत कौन। ई को भैया मतलब जो ही है कि जी के कुल की जोन रीति रिवाज रात है तो उनके बच्चन में भी बे गुण आ जाते हैं। जैसे जंगल के शेर में जोन गुण रात हैं बे उनके बच्चन में आ जाते हैं उन्हें सिखावे की जरूरत नहीं पड़त है। तो ई को मतलब भैया जो ही है। और भैया देखो अब होरी चलबे की बेरा तो चलबे से पहला हम सभी भैया बहन से जो ही कहे हैं कि ई गर्मी के मौसम में अपन खा हमेशा लू से बचाव करने हैं पानी पियत रहने हैं शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने। अगर जोन भैया बहन खाकर लू लपट लग जाए तो उनमें लापरवाही भी बिल्कुल नहीं करने हैं अंधविश्वास में नहीं फंसने हैं। यानी हमारे कहबे को मतलब जो है कि अंधविश्वास झाड़ फूक के चक्कर में नहीं बिदने अपन खा डॉक्टर भैया यहाँ दिखाने हैं और डॉक्टर भैया जो दवाई दे वह अपन खा खाने हैं। और अब हो रही देखो चलबे की बेरा तो चलबे से पहला सभी भैया बहन का कल के कार्यक्रम सो बता दिया जाए। कल घरनी कार्यक्रम में सभी भैया बहन हर सुने लोक पंजरी कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भेंट वार्ता सुने रासायनिक उर्वरक एवं खाद का संतुलित उपयोग विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल से रविंद्र कुमार प्रजापति से जी की बातचीत और आज की सीख में सुने जय ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए अपनो तपनो बतकाव हुए मनोरंजन हुए तब तक अपने बिरजू भैया आज्ञा देव पंचो राम राम।

0: ग्रामीण भाइयों के लिए अभी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं सुर्खियों में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण का प्रसारण।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुभमोहन भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार। Shubhamoy Bhattacharya, economic analyst and

0: जल जीवन मिशन का टैप वाटर, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में ड्रेन्स एंड ऑल यू नो वाटर बोर्न डिजीजेस, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें, तो
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंट

0: बेनिफिट्स की बात करें तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाई। और आपने सभी कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं जिसमें ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य इम्प्रूव हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये बूम की तरह आया है क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। और जल जीवन मिशन क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, उसमें हर ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है क्योंकि उसके पास वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। फिर मैं सैनिटेशन की अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन, ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस

0: अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: Absolutely, Shubma. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubma also mentioned about, you know, the health aspect. Now,

0: बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
1: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
0: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
1: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
0: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
1: जी, एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है। जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियल पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहां बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इंपॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वल

0: डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में है, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गीत। आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन है और शब्दरचना है आनंद बख्शी की।

0: प्यार दीवाना होता है। अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत था, संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लो न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया की घटना

0: कार्यक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन

0: चुका है।
1: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10

0: ने कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1041 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mi Aung Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्सटेंडल

0: एट यायार न्यूज अलर्ट्स पर भी हैशटैग आस्क यायार के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन यायार और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताए।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे।
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए, और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागडे हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मैं श्रीता जाफरे बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर हाई बीपी वाले ने अपने?
2: हाँ जी देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन को हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है COPD एस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिजम्स है वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिये जो हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज्यादातर कि अप्रैल मई जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे, अगर उस 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना दायर है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर

0: 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, राधा दर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता
1: अगर
3: है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
3: बिल्कुल
1: क्या सहायता उपलब्ध कराई
3: जा सकती है? उसमें आप फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े, वो गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
4: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
4: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
3: धन्यवाद।
4: जी मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना

0: पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
1: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहां कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
2: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
1: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
2: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
1: बिल्कुल।
2: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए, ज्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
2: और वो भी खतरनाक होता है। धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो, नमस्कार जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
2: जी।
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान, हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआरसा घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करते?
1: हाँ जी, देखिए, कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपके शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सून रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल

0: ऐप न्यूज ऑन EIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
1: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इस पे क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
2: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खासतौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है, तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
2: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
2: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
0: जी,
3: हाँ कनक जी, जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ जी जी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील छोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप AC चला के AC का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि AC का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह AC चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: हाँ जी, और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि IMD की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
4: IMD जो
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा है, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
4: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहां भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो IMD जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हमारा

0: वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं, आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारा जो रीजनल सेंटर है जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहां से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्फॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहां जहां मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है, तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है, तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है, तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए, जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है जब गर्मी धरती नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया जगदीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेशन मशीन पे जट्टा कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उससे भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
3: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है, और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले, और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
3: बिल्कुल बहुत
1: का बच्चा
3: बिल्कुल
1: है,
3: बिल्कुल सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है, और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है, और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी

0: बढ़ रही है तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे।
2: देखिए जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं तो बट आजकल क्या होता है क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्यों, प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज्यादा पकड़ेगा क्योंकि वहां नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?

0: क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका उसका प्लेन में भी रहेगा जब जब हिल में हो रहा है तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान क्या है?
0: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया। तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया। तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है। तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनिसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोता, इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ने के लिए आप हमें मेल भी भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है aircharpur1976@gmail.com। ईमेल आईडी पुनः सुने aircharpur1976@gmail.com। आज की शाम को कुछ ऐसा बनाया जाए, आज की शाम को कुछ ऐसा बनाया जाए जो भुलाए ना बने उसे भुलाया जाए। झील खामोश है गुमसों में हवाओं का झोंका, झील खामोश है गुमसों में हवाओं का झोंका, कंकड़े मार के लहरों को जगाया जाए। मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भूपेंद्र कुमार वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में याराना फिल्म का गीत, माया गोविंद का लिखा गीत था, संगीत अनु मलिक का। इस गीत को पसंद किया था सेक्टर 67 मोहल चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर मनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। और हमको मेल प्राप्त हुआ है जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमत कौर, मनु, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम चरौदा बार नवापारा अभयरण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर। और ये हमें मेल प्राप्त हुआ है टीकमगढ़ से, राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव का। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और बिलिस डिकेस्टो का।

0: नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रोबिन राणा। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजयदेव तामोरिया, तुषारदेव तामोरिया, डोली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर का। मोहंदरा पन्ना से आकाश, नम्रता, आरबी और आस्था बहरे। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकट परवीन। गंज डुंडवारा से शमसुल कमल राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: श्रोताओं, आप मनभावन कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं airchatarpur1976@gmail.com। आप सभी लोगों से हमारा आज वादा है कि सभी के मेल शामिल करने की कोशिश करूंगा। गांव फ्रांसिस से हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पत कुमार डूडी। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और मेहू का। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह का। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञे संघई, प्रीते संघई और समस्त परिवार के लोग। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलड़कर, रतनमाला सुलड़कर और ओमकार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। तिंदी रोड नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से नरेश वर्मा, यश वर्मा, तनिष, पुष्पेन, हिमांशु, दिव्यांशु, हर्षित वर्मा, योगेन्द्र वर्मा, जयांस वर्मा, स्वास्तिक, मीताक्षी, शैलेन्द्र और सुमित्रा और समस्त परिवार के लोग। राष्ट्र जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से दिनेश वर्मा, आशा, वंदना, रोहित, कार्तिक, सोनू और समस्त परिवार के लोग। दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र जैन। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रेम थांदी, मेबी बामिका बाणी थांदी का। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं एलिसा चुनाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज में बंटी और बबली फिल्म का गीत गुलजार का लिखा गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का।
2: Then.

जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो ट्यून किया है तो अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आप हमें मेल भेज सकते हैं AIR छतरपुर 1976@gmail.com पर।

और ये मेल प्राप्त हुआ है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी लक्ष्मी जयलक्ष्मी ऋषभ अंश लक्ष्मी का। सिंधौरी बलेरी से जीशान बार से इमरान शेख अयूब खान। कंवर कॉलोनी बरवाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली का। बरेली मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची तनु करमरकर का। बठिंडा रोड मार्डी डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग और तानिया नारंग। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव। मोहल्ला हलवाई शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बख्तर फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसीम परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी हिना कोसर। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित राज और पीयूष कुमार। जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना माया देवी ऋतिक और आदित कसाना का। ग्राम पोस्ट अटकोहा तहसील अवकुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू कमलेश कुमार साहू देवेंद्र कुमार साहू गजेंद्र कुमार साहू रवि कुमार साहू सोनू साहू धर्मेंद्र कुमार साहू राघवेंद्र साहू भावना साहू यशदेव साहू और समस्त परिवार के लोग। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या नरेन पांड्या बीरन पांड्या। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति श्रीमती सविता प्रजापति घनश्याम राम हरिशंकर रत्नेश कुमार प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता पांडे राम राजवाड़े। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी। ग्राम मामना सरीरा जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा प्रियल देवंशी विश्वकर्मा। और यहीं से सुनना चाहते हैं साधु बाबा बीरेन सिंह तोमर संजय दीपक और सोनू तोमर का। बाड़ी खाम गांव से अनंता वाड़े रामेश्वर वाड़े सोम साक्षी खुशी और समस्त परिवार के लोग। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला राठौर विशाल निशा का। उन श्रोताओं से गुजारिश है जिनके मेल शामिल हो गए हैं तो दोबारा मेल सेंड न करें, नए श्रोताओं को मौका दें। और अब आप सब लोगों की फरमाइश पर सुनवाते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज में हम फिल्म का गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का।

इस गीत को पसंद किया है मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज ने।

ग्राम कंडेरा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर से जुगल किशोर पटेल, शोभा सिंह, उत्कर्ष पटेल, उन्नति पटेल, प्रमोद कुमार पटेल एवं समस्त परिवार के लोगों का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, मोहम्मद इसार और नरगिस खातून का। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, एसरा शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। रामचबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक रुबना और यस मंसूरी। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी। ग्राम पीपर रोड सारगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। फाजिल का पंजाब भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी खेड़ा और समस्त परिवार के लोग। गांव हीरा फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का।

कोलावरी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। गांव कुमार हेरा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। महबुजुर्ग से ममता नामदेव, लक्ष्मी प्रसाद नामदेव, प्रियंका नामदेव, रामचंद्र सीधा, गंगा जी नामदेव, आकाश नामदेव, श्रीदेवी मीनाक्षी, पूरन नामदेव और समस्त परिवार के लोग। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं दो आंखें बारह हाथ फिल्म का गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में इंदिरवर का लिखा गीत है और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, मनोहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। आज के सफर में हम सफर है आपका रेडियो दोस्त भूपेंद्र कुमार वर्मा। कार्यक्रम की अगली फरमाइश लिख भेजिए, हमें मेल प्राप्त हुआ है ग्रामवा पोस्ट तीतरा खरीदपुर जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अंजलि जाटव, ऋषि जाटव अनुपुर मध्य प्रदेश से, जयमंत्री केवट अंजलि रुद्रानी और कृष्णा केवट का, ग्राम पनवाड़ी जिला महुआ उत्तर प्रदेश से देवीदीन अहिरवार, सुनीता देश कुमार कपिल और पूजा वर्मा का, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय जिला सागर मध्य प्रदेश से चंदेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक और तन्वी गोहर का, ग्राम रोहिणी जिला महुआ उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशु, रेणु और रोनिका यादव, धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू, गायत्री मौर पनवाड़ी जिला महुआ उत्तर प्रदेश से शिवनारायण पांचाल, देवान लक्ष्मी प्रसाद, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्य, मोहिनी गुड्डी और अंकुश पांचाल का, गोना कुसमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, रामदेवी नामदेव, चाहना और अनन्या नामदेव का, फवारा चौक सिरसरा जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और समस्त परिवार के लोग, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कोसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानू पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार का, जिला ग्राम बनेका तहसील बंडा जिला सागर से बलाम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद सेन, संगीता सेन, महन सेन, रामदेवी सेन, सुन सेन, नंदिनी सेन, रिया, गौरव राज, आर्यन कौशल और दीप्ति का, श्रोताओं आप गीत की फरमाइश लिखते हैं लेकिन आप अपना नाम पता एड्रेस भी जरूर लिखें। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर, बहलोर नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बरवार, सुखवीर काजल बरवार, रघुवीर बरवार, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और चटकू मटकू, और ये है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्रोता भगत, किसुतासु, अर्णव, आनंद, सत्यम, आनंद, मोरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभी है, राधिका गजभी है, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभी है, दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं दलाल फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल आवाज में, विकास मेहरा के लिखा गीत है, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार रामदेवरा से धीरेज चौहान डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुलकर सदानंद मंदुलकर कुमार गौरव मंदुलकर कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय धुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम गंगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और नियमित आहूजा का श्रोताओं आकाशवाणी की छतरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं मन भावन कार्यक्रम और ये मेल प्राप्त हुआ है बक्सर बिहार से सफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और सुरेश रमेश साहू डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी डॉक्टर सोनम अधीबा और दानिश अंसारी गोला बाजार बक्सर से सिद्धानंद आर अभियानंद आर

और परमानंदार सारिमपुर बक्सर से राजेश जी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का। पाटन गुजर से धीरज भी रावारी का। पदमा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार का।

केसल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, संदीप जाटव, संदीप कौर, संदीप जाटोलिया, वली उल्लाहम अंसारी,

आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां का आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में घर द्वार फिल्म का गीत। अनजान का लिखा गीत है, चित्रगुप्त का संगीत।

जी हाँ, शो तो हमारा और आपका कार्यक्रम अति दिलचस्प बन जाए तो जरूर नाचने को मजबूर हो जाते हैं। अगली फरमाइश लिख भेजी है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल।

0: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी किशन, हमना मनमानस, कनिका पटेल। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश कुमार और नियति कुमारी। सीतामऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से दशरथ सेन, रानू सेन, सुनीता सेन, कौशल्याबाई सेन, श्रद्धा, गुरमीत और सांची सेन का। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लालजी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे का। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माई पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी, पूरा माखीजा, कुटुंब सहृदय और सभी परिवार के लोग। गांव कलमंडी खुर्द जिला झाड़ावा राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत का। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन घनश्याम भार्गव का, बाबू गोरी और हसन सिक्का का। सांगरी शहर से अल्ताफ होजे, सैफुल्ला, सवाहत, किरत होजे और रेहान शेख। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फुटपाथ फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का।
1: नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, दिल को करार।
0: नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने।

ग्रामपुर सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव अभय अनिल अजीत ज्योति अनीता संजना रेखा भारती पूर्वी रोही अनु अनन्य शक्ति भक्ति आदर्श लव कुश और समस्त परिवार के लोग आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योग शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता झारखंड से एसएम जावेद शगुप्ता अंजुम धर्मपुरी से शेख फाई मोहम्मद मोहम्मद तस्सीम शेख मुजफ्फर अयान फैजान सुमेरा कशिश साइमा हसनैन और खुशी

ग्राम करमौरा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ से रघुवर सिंह यादव, लक्ष्मीबाई हरिचंद यादव, श्रीमती रामश्री देवी, सुरक्षा देवी, अंजनी देवी, अनिरुद्ध और अनुपम का। ग्राम फुटेज जिला टीकमगढ़ से जगप्रसाद मिश्रा, पूरनलाल सोनी, राम कुमार बिंदुआ, देवकी नंदन मिश्रा। कटकाहा जिला पन्ना से प्रताप सिंह, सविता सेन, प्रसाद नेहा, अमेश कृष्णा और प्यांसी सेन। महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम कस्तूरी, आराधना और राम कुमारी। और महोबा उत्तर प्रदेश से ही राजेश सिंह, राम अवतार, यदुवीर, संध्या, शिवानी, राधिका। महुआ से भगवान दास राजपूत, निहांस राजपूत, सेवा सिंह, कपिल, गजेंद्र और पुष्पेंद्र। मऊरानीपुर से राम कुमार कुशवाहा, रामलाल कुशवाहा, बीरूभाई कुमारी, रक्षा माया देवी, रानी देवी कुशवाहा। जतारा से चतुर्भुज अहिरवर, विनोद रानू, ब्रजेश लक्ष्मी, सुषमा संध्या, पूजा निकेत, रविंद्र और अंशिका। दिलानिया रोड भाटीपुरा महाजपुर जिला चतुर्भुज से जवाहरलाल कुशवाहा, सोना कुशवाहा, रामचंद्र कुशवाहा, गिरजा देवी और भगवान दास कुशवाहा। शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामका, अमर तामका, संतोष शर्मा, राजेंद्र जग, राजू तामका, दिलीप वर्मा, रविकांत नामदेव, पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना, मोना हनी, यश सौम्य और मम्मी, इनके मम्मी पापा का। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं साजन चले ससुराल फिल्म का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के बोल हैं संगीत नदीम शिरवन का।

बड़ी घेरा पंजाब से मिंटू पिंकी लवली आरती पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया मंजू कटारिया नरेश मोहत्रा ज्ञान भूषण राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल पटी कृतिका और रमेश चंद्र का श्रोतों आज का मन भवन कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें पत्रों के माध्यम से ईमेल के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइएगा।

वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हर जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आप लोगों से बिछड़ कर रहना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपने दोस्त भूपेंद्र कुमार वर्मा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइश फिल्म गीतों का कार्यक्रम मन भवन। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से

0: प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi,